फिर बाबा फरीद साहब जी की शादी हो जाती ते फिर बाबा फरीद साहब जी के घर के अंदर छे पुत्रा ने ते दो पुत्रियां ने जन्म लिया है समा पा के। और मैं एक होर बेनती करता चला जिन्या भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर है मैं किसे वक्त आप संगतां दे सन्मुख बेनती रखण दा यतन करांगा। तकरीबन भगत गृहस्थी ने सारे गुरु साहिबान श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं छड्ड के गृहस्थी ने जिन्हें भी उच्च क्वालिटी दे सर्व उच्चतम भगत होए सारे दे सारे इस गृहस्थ मार्ग दे विचों दी हो के गुजरे ने। और जिन्हें उन्हां दे कोल उन्हां दे शागिर्द बन के आउंदे रहे उन्हां नूं उन्हां ने गृहस्थ मार्ग धारण करन दा उपदेश भी दिता है। बाबा फरीद साहब जी दे घर दे अंदर छे पुत्रां ने ते दो पुत्रियां ने जन्म लिया है। पाक पटन तो चलदे चलदे एक बार बाबा फरीद साहब जी पहुंच जांदे ने एक शहर दे अंदर जिस शहर दा नां है मोकल देव। और ये शहर अजकल पंजाब दे अंदर है। मैं आने वाले समय दे अंदर अर्ज करांगा मोकल देव। मोकल देव शहर नूं वसाया सी एक मोकल नाम दे राजे ने। मोकल नाम दा राजा सी, धर्मी राजा सी, न्यायकारी राजा सी। जो कोई गरीब गुरबा इस दे पास चल के आउंदा सी ये उन्हां दियां झोलियां भरदिया करदा सी। कदी अनाज दे नाल कपड़े दे नाल जो भी लोड़ होनी पूरी करिया करदा सी। मूल रूप विच कह लो कि मोकल नाम दा राजा धर्मी राजा सी। इन्हें एक नगर आबाद कीता ते नगर दा नाम रख दिता गया मोकल देव। चलदे चलदे बाबा फरीद साहब जी मोकल देव शहर दे अंदर नगर दे अंदर पहुंच जांदे ने। कुछ दिन मोकल देव नगर दे अंदर रहन तो बाद उत्थों दे लोग ते उत्थों दा राजा मोकल बाबा फरीद साहब जी दे जीवन तो इन्हां दियां गल्लां बातां तो इन्हां दियां कथा कहानियां तो बड़े मुतासर होए बड़े प्रभावित होए। जद बाबा फरीद साहब उस नगर दे अंदर रहन तो बाद चलन दी तैयारी करदे ने उत्थों दा हुक्मरान राजा मोकल बाबा फरीद साहब जी दे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहन लगा साईं जी मैं तुहाडे चरणां दे अंदर एक भेटा रखनी चाहुंदा। फरीद साहब पुछदे ने कि भेटा दी मैनूं लोड़ नहीं है और ना मैं तुहाडे कोल कुछ लैण वास्ते आया हां। जो लैण वास्ते किसे गर्ज वास्ते आउंदा है सही रूप दे अंदर उह साईं ने। मैं ते रब दा संदेश तुहाडी झोली दे अंदर पाउण वास्ते आया ते मैं तुहाडा शुक्र गुजार हां तुसीं रब जी दीआं गल्लां बातां रब जी दीआं कथा कहानियां मेरे कोलों कुछ दिन लगातार सुनिया ने इस गलों मैं तुहाडा धन्नवादी हां। फिर भी वह मोकल राजा कहन लगा मैं तुहाडे चरणा विच इक भेट ते करनी चाहुंदा। फरीद साहब पुछदे ने कि की भेट रखनी चाहुंदा है। ये कहिंदा है जी ये जिहड़ा शहर इस शहर का नाम है मोकल देव। ये नाम मेरे नाम दे उत्ते टिकिया है ते अज मैं चाहुंदा कि इस शहर का नाम बदल के तुहाडे नाम दे उत्ते रख दिता जाए। मोकल नाम दे राजे ने उस शहर दा नाम बदल के रख दिता फरीदकोट। फरीदकोट शहर अज पंजाब दे अंदर है और जिला है वड्डा शहर है उहदा नाम रख दिता फरीदकोट ते रखिया बाबा फरीद साहब जी तो प्रभावित होके। फरीद साहब रब जी दे राह दे उत्ते चलदे ने और रब जी दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं कुछ ज्ञान पैदा हुंदा है। कोई भी चलन वाला होवे कोई जात कोई मजहब कोई कौम कोई बरादरी कोई भाईचारे का वितकरा नहीं कोई भी चलदा है उसनू रब्बी ज्ञान अंदरों मिलना शुरू होंदा है। उस रब्बी ज्ञान नू कई ते अपनी मस्ती दे आलम दे अंदर छुपा लेंदे ने बोलदे कुछ नहीं है खामोश हो जांदे ने। पर कई उस ज्ञान नू अपने अंदर पैदा हुए ज्ञान नू अल्फाजा का रूप दे के लोकां दी झोली दे अंदर पाई जांदे ने लोकां दे नाल उस ज्ञान नू सांझा करी जांदे ने। यही कारण है गुरु साहिबाना ने साडे सामने साडी झोली दे अंदर अपने पावन कलाम पावन बाणी साडी झोली दे अंदर पाई जिसका नाम गुरु बाणी बन गया। फरीद साहब अरबी दे ते फारसी दे बड़े विद्वान ने बाबा फरीद साहब पर पंजाब दे अंदर रहन वाले सन मिंट गुमरी दे अंदर रहन वाले सन मुल्तान दे अंदर वड्डे होए जमे पले इस करके इन्हां ने पंजाबी भाषा दे अंदर अपनी बाणी नूं रचिया। पंजाबी भाषा दे अंदर ठेठ पंजाबी दे अंदर इन्हां ने अपने अंदर दे ज्ञान नूं सलोकां दे रूप दे अंदर साडे सामने रखिया। अज जदों बाबा कबीर साहब

ठाकुर प्रभु तुम्हारी शिष्य रखो हो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, रखो हो लाज मुरार। वाहिगुरु साहिब जीओ, जित दिहाड़े तन बरी, साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनींदा,

ना मैं छोटा, एक बच्चे नूं आउंदी है जवानी नजर, जवानी दे अंदर पहुंच के जवानी दियां जलहीजां दे उते जद किसे दे कदम आ जान, जवानी दी दलहीज दे उते खत्म हो खड़ा होके जे कोई अगे वेखे कि हुण अगे आउण वाला समा किवें आ रहा है। पहली बेनती ते ए करदा चला, जवानी दे दौर विचों गुजरदिया अगला समा चेते विच आउंदा ही नहीं है। मैं ते गल कर रहा ना कि मौत चेते करो, मौत चेते करनी ते बड़ी दूर दी गल है, उनु बुढ़ापा भी चेते नहीं आउंदा जिहड़ा बिल्कुल जवानी दे गवांड विच खड़ा है, बिल्कुल नाल खड़ा है। मैं ते कह रहा ना कि रब नूं चेते करो जवानी दे अंदर, ते परमात्मा ते मौत ते दोवें बंदा भुलाउण दा यतन करदा है, चेते करन दा यतन नहीं करदा। जवानी दा दौर होवे, बाहां दे अंदर बाल होवे, चार लोग राम सलाम करन वाले होन, अपना कमाया धन जेब दे अंदर होवे, धन दी गर्मी होवे, ते तौबा तौबा रब चेते आदे, रब ते नेड़े तेड़े आदे नहीं। फिर मेरा निजी तजर्बा है, जिन्या देश विदेशां दे अंदर मैं विचर के वेख्या है, खिमा चाहवांगा जिथे जिथे मैं गया मेनू जिहड़ी संगत दे दर्शन होए, उन्हां सत संगियां दे अंदर बहुते ढली उम्र दे सत संगी हुंदे ने। मैं सादे रूप विच अर्ज करां, बुजुर्ग वार सत संगी हुंदे ने। कारण की है कि जवानां वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नहीं, कि जवानां वास्ते गुरद्वारा गुरद्वारा नहीं, कि जवानां वास्ते बाणी असरदायक नहीं है, जवानां नूं इह लाभ नहीं देंदे। पर जवानी दे दौर विचों गुजरदिआं बाणी दा प्रेम, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रेम इह चेते विच आउंदा ही नहीं। हंकार ही इन्ना है, धन दी गर्मी इन्नी कमलियां करके रखदे। जिहड़े जवानी दे अंदर आउंदे ने उहनां नूं उचेचे तौर ते नमस्कार, जिहड़े जवानी विच आउंदे। तकरीबन बजुर्गां दी संगत बहुत ही मिलदी है। ते जे मैं अगली बेनती करां, जिहड़े तुसीं चार बजुर्ग हो कल नूं तुसीं वी आउणा छड्ड देणा, जे आए हो बजुर्गी दे अंदर ते हुण ही गुरु दे अनुसार आ जाओ, हुण ते अपनी मर्जी छड्ड के आओ, अजे भी अपनी मर्जी नाल लै के आ रहे हो, अजे भी गुरु दे अनुसार नहीं। कि जिस तरह सतगुरु कहिंदे ने मैं अमृत पान कर लवां, मैं पंज ककारी बन जावां, मैं गुरु गुरु जपना शुरू कर देवां, मैं मन विचों ईर्षा गवा देवां, हुण ते उम्र टल गई है, नौवां तीआं ने, दोतरे पोतरे ने, कुटुंब कबीला है, ते हुण मैनूं निंदा दी की लोड़ है, चुगली ईर्षा दी की लोड़ है, हुण मैनूं झूठ फरेब ते ठगी दी की लोड़ है। पर अजे भी उह बुराइयां नहीं छड्डदा। अगर बुढ़ापे दे अंदर गुरुद्वारा साहिब विच आए हो ते मैं तुहाडे चरणां विच उचेचे बेनती करां, फिर आउण वांग आया करो, जिस तरह सतगुरु कह रहे ने फिर उस तरह आया करो। जिहड़े चार दिन जीवन दे बाकी ने उहनां नूं सवार लो। मैरज ये कर रहा सां कि एक अदीब कहिंदा है, एक मदी, किसे अदीब दा बोल है बाणी विच नहीं, वो कहिंदा है एक मदी जवानी दे अंदरों निकलदियां निकलदियां एक ते बंदा नशियां दे अंदर मस्त होवे, दूजे तरुण, दूसरा उहदी उम्र जवानी दी होवे, तीजे तन, तीसरा जेब दे अंदर तन होवे, चौथा ताम, उहदे कोल रहण बसेरा करन वास्ते ताम वी होवे, मतलब घर वी होवे, रहण वास्ते घर होवे, जेब दे अंदर तन होवे, बहार जवानी दी होवे, गुरबाणी नेड़े तेड़े ना होवे। ते ओ अदीब अगली पंक्ति विच कहिंदा है, पाप करे ते क्यों रहे, बचे बचावे राम। इस तरह दे दौर विचों गुजरदिआं रब जां मौत नहीं, पाप ही चेते विच आउंदे ने, अपराध ही ध्यान विच आउंदे ने। खैर अपने विषय नाल जुड़ो, जवानी विच जे कोई अपने अगे वेखे भी अगे आउण वाला समा किस तरह दा आ रहा है, ते उहनू दिसदा है कि एक बिरध बाबा जिहदियां लत्तां दा बल चला गया है, जिहदे हथ अपने आप कंबणे शुरू हो गए, जिहदे नेत्रां तों दिसणा बंद हो गया, जिहदी जुबान लड़ खड़ाउंदी है, गले दी आवाज मधम पै गई है, मेदे दी पाचन क्रिया जिहदी चली गई, जिहदे कन्नां दी श्रोत शक्ति भी नष्ट हो गई, एक इस तरह दा शीन होया कमजोर होया बुजुर्ग बाबा जवान नूं दिसे, पर जे जवान दूर तक अगे निगाह सुट के वेखे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं पढ़ो, सतगुरु कहिंदे ने दे लम्मी नदर निहाली है, पढ़दे हो ना सुनदे हो, सो रोज रोज श्री आसा जी दी वार, दे लम्मी नदर निहाली है, लम्मी नजर सुट के वेख अगे आउण वाला समा किवें दा रहा है, जो तू कर्म कर रहे हैं तेनू फल की मिलना है, लंबी नजर करेगा ता ही ध्यान में आएगा।

जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी तिस राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीयो किजना बुझे किजना सूझे

तड़ा ता थोड़ा मान करे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निघी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों आप रोज रोज सरवण करदे आ रहे। मन बिरतियां एकागर करो भगत जी दे इस श्लोक नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा। भगत जी कहिंदे ने किज ना बूझै कोई गल समझ विच आ ही नहीं रही, किज ना सूझै कोई समझ विच नहीं आ रही, को राह कोई खेड़ा कोई किधर जावां किधर ना जावां ए गल पकड़ विच ध्यान विच नहीं आ रही। पुछया भगत जी क्यों, कहन लगे जदों मैं दुनिया नू नेड़े हो के वेख्या ते दुनिया मैनू जल्दी बलदी ते सड़दी नजर पई। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने भी इस गल की पुष्टि की और गुरु नानक पातशाह महाराज जी का जीवन बिरतांत लिखते वकत भाई गुरदास साहब भी कहिंदे ने, कहिंदे ने बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दे साई। तो की जदों गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुल्तानपुरों भाई मरदाना साहब नू नाल लेके निकले ने तो की चार चफेरे उदो अग बल रही सी। ए उस अग दा जिक्र नहीं जो बाहरी अगन है, ए उस अग दा जिक्र कर रहे ने हजूर जो अंदरूनी अगन है। आरंभ दे अंदर मैं एक होर भी बेनती करदा चला, विद्वाना ने अग नू मन्या है चार तरह दी। नंबर एक दे उत्ते दावा अगन, जिस अग्नि दे नाल भोजन बनता है, जिहड़ी अग्नि कारखानियां दे अंदर मोटर कारां दे अंदर इंजनां दे अंदर फैक्ट्रियां दे अंदर ते जंगलां दे अंदर लगदी है, इस अग नू विद्वाना ने नाम दिता दावा अगन। नंबर दो दे उत्ते बड़वा अगन, किधरे किधरे समुंदर दे पानी दे अंदर तेल मिलिया होवे ते उस तेल दे कारण लग जाए अग, उस समुद्री अग नू विद्वाना ने ना दे दी।

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुकदे ना। हकीकत ए है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नूं जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास ए अज तों पहलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर ए वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर ए आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब, आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है, तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जा के तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लैयो, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लैयो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने। जो तंदरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, ते जो रोकी बनाउन वालियां ने चीजां वस्तुआं ओह वी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा वी तुहाडा, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानूं खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैस्या द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
गुरुद्वारे दे अंदर मंदिर मस्जिद दे अंदर धर्म स्थाना दे उते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नू जो तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडी मर्जी है उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का ते कोई उजर मामला ही नहीं, धन का ते कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे दे अंदर ते मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन ते कदी ये नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब दे अंदर ते मैं पब दे अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला ते मैं अपना जोर लाउना, धन ते इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो उहनूं सही पासे वरतो, ये तुहाडी समझ है। मैं एक बेनती होर भी चलो करदा चलां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजै दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण छीदे कोल हाथ फैला के मंगो। अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा दरवाजा नौ करे तुहाडी डोर खड़काए, तुसी पुछोगे ना तेरी मंग की, कपड़ा चाहिदा है, भोजन चाहिदा है, धन चाहिदा है, जुत्ती चाहिदी है, तेरी मंग की है, कोई मंगता आ जाए। हुण जद ए बोल बोले कि सामत दीजै दयाल प्रभ जे तुम्हें अरादा, सतगुरु मैं अरदास लेके आया तेरे दर दे उते, तेछी दे चरणा विच अरदास लेके गए, उन्हें अगो पुछया आउण वालिया तेरी अरदास की है, तेरी मंग की है, ते आख्या सा मत, मत मैंने अकल, हे मेरे दयालु स्वामी जी मेरी झोली दे अंदर ओ अकल पाओ। केड़ी अकल? जित तुम्हें अरादा, जेड़ी अकल दे नाल मैं तेरे नाल जुड़िया रवा, तेनू अरादा रवा। इत्थे मैं एक बेनती होर करदा चला, साडे शरीर दे जिन्ने अंग ने उह सारे साडे मन दे कह चलदे ने। मन कहिंदा है अखां नूं इधर वेखणा है ते अखां उधर वेखदियां ने दूजे पासे नहीं, मन कहिंदा है अखां नूं उत्ते वेखणा है ते अखां उत्ते वेखदियां ने थल्ले नहीं वेखदियां, मन कहिंदा है हत्थां नूं कि इस तरह हिलना है ते हत्थ उस तरह ही हिलना शुरू कर देंदे ने, इशारा करना शुरू कर देंदे ने जिस तरह मन दा विचार बनदा। पढ़े लिखे देश दे वासी हो, मेरी बेनती नूं समझण दा यतन करियो। मन कहिंदा है पैरां नूं इस मार्ग दे उत्ते चलना है, ते पैर अगों कोई उक्ति युक्ति अपील दलील बयान नहीं करदे, पैर उस मार्ग दे उत्ते तुरना शुरू कर देंदे ने। मन दा विचार बन जाए कि अज मैं पैरी चल के पब विच जाना है, ते पैर तुहाडे सारे शरीर नूं लै के पब तक पहुंचा देंगे। मन दा विचार बन जाए कि अज पब विच नहीं जाना, अज मैं मंदिर गुरुद्वारे विच जाना है, मस्जिद विच जाना है, ते तुहाडे दो पैर तुहाडे सारे शरीर दा वजन चुकदे चुकदे तुरदे तुरदे ओह तुहानूं गुरुद्वारे लिया के खड़ा कर देंगे। तुहाडा मन कवे कि अज मैं लंगर विच सेवा करनी है, ते तुहाडे हाथ भांडे साफ करना शुरू कर देंगे, तुहाडे हाथ लंगर वरताउणा शुरू कर देंगे, ते वरताउंदिआं वरताउंदिआं मन ढेरी ढा दवे, मन कह देवे कि हुण नहीं वरताउणा, ते उत्थे ही ये हाथ भी बंद हो जांदे ने, वरताउणा बंद कर देंदे ने। मेरे कहन तों गरज साडे जिन्ने शरीर दे अंग ने उन्हां सारिआं अंगां दे उत्ते हुक्म चलदा है साडे मन दा। मन पैरां नूं जिधर इशारा करदा है पैर तुरदे ने, जिस तरह हत्थां नूं इशारा करदा है हत्थ करदे ने, जिस तरह मन अखां नूं कहिंदा है अखां उस तरह वेखदियां ने, जो मन दी मर्जी हुंदी है कन्न नूं सुणदे ने, दूजा बोल कन्न नहीं सुणदे, मन दी मर्जी दे मुताबक कम करदे ने। पर जे साडे सारे शरीर दे अंग चलदे ने साडे मन दी गुलामी अंदर, मन दे हुक्म अंदर, ते ख्याल करियो मन भी साडा आजाद नहीं है, साडा मन कम करदा है साडी बुद्ध दे मुताबक। जिस मनुख दे कोल बुद्ध चंगी होवे, समझ चंगी होवे, उहदे मन दे अंदरों बनन वाले विचार चंगे बनन गए, जिहदे विचार चंगे बन गए
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਅਗਰ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਬਿਖੇਰਦਿਆਂ, ਕੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਆਖਿਆ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੇ ਰਹਿਮ ਇਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਰਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤ ਪਾ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਲ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬਚਨ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਸੂਤ ਤੋੜਿਆ
मणका मणका करके ओनू मिट्टी दे अंदर बखेर दिता। भाई गुरदास साहब किधरे खड़े सन, उन्होंने वेखिया कि बांदर ने सोने की कदर नहीं पाई, कलम लई कागज लिया ते एक बोल सानू उपदेश करन वास्ते भाई गुरदास साहब जी ने लिख दिता। कहन लगे रतन मणि गल बांदर है कि कीम ना जाने, रतना दी जड़ी माला बांदर दे गल वे से पर बांदर की जाने उहदी कीमत की। सोना पावे कीमती है पर जिन्हू समझ है उहदे वास्ते कीमती है, जिन्हू नहीं समझ उहदे वास्ते उह मिट्टी दे बराबर है। तुहानू समझ है तुहाडे लई सोना कीमती है, मनुख दे जीवन दे अंदर सोने दी समझ है, मनुख सोने दी संभाल करदा है। सोने नू या सजावट दे रूप विच या किधरे लोकरां दे अंदर रखदा है, खुले आम घरां दे अंदर सोना पिया टेबल दे उत्ते दीवार दे नाल लटकदा होया तस्वीरां दी तरह सोना नजर नहीं पैंदा। लोहा आम मिलदा है, कीमत बड़ी थोड़ी है, सोना खुले आम इस तरह पिया नहीं मिलदा, ना सुनियारियां दीयां दुकानां दे उत्ते ते ना साडियां घरां दे अंदर। तो खैर क्योंकि सोने की कीमत सानू पता है, सोने की कीमत का ज्ञान है, पर पशु नू सोने की कीमत का नहीं पता। पशु नू पैरां दे हेठ लताड़दा है, पैरां दे हेठ कुचलदा है, उत्ते पैर रखदा है ते अगे निकल जांदा। चलो मैं एक बेनती होर आप संगतां दे सन्मुख रखदा चला, जिन्नी दुनिया की करंसी है, चाहे वह पाउंड है, डालर है, रुपया है, यूरो है, बाकी दे तमाम नोट करंसी ने, उहदी समझ

जिस मनुख नू धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदिया चलदिया अपने सवासां दी समझ पै गई उते सवासां दी करेगा संभाल ते खिमा करियो। जिन्हू ना समझ पई ओ पशुआं वांग इन्हां सवासां नू अजाई रोलेगा। भावे पौंड किन्ना कीमती 80 रुपये का एक पौंड है पर पशु दे सामने पाओ ते पशु नू पैरां दे हेठ रोल देगा। भावे दिनार 200 रुपये विकदा होए पर पशु दे सामने पाओ ते ओ पैरां दे हेठ रोल देगा। भावे डालर 50 रुपये रेट ते विकदा होए पर पशु ते ओनू पैरां दे हेठ ही कुचलेगा ना। पशु के जाने की कीमत की। जिस मनुख नू समझ आ गई के सवास कीमती ने ओते अपने एक एक सवास दी संभाल करता है। भगत जी कहिंदे ने संभल बुक भरी ओ सवासां दे बुक भर भर के कूड़ेदान दे अंदर नहीं पाउंदा। बड़ा सोच के संभल के ओ सवासां नू खर्च करता है ते जिन्हू समझ नहीं आई उस सवासां दे बुक भर भर के कदी काम दी बिन दे अंदर कदी क्रोध दी लाट दे अंदर कदी ईर्षा दे अंदर कदी निंदा दे अंदर कदी चुगली दे अंदर वो अपने सब सवासां नू इस तरह ही मिट्टी दे नाल मिला के मिट्टी बना के रख देंदा है। क्यों? क्योंकि उन्हू समझ नहीं है। मनुखी ने ना एक नू समझ आ गई वो रब दे मार्ग दे उत्ते चलना शुरू करदा है। दूजे नू समझ नहीं आई वो रुलना शुरू करदा है बर्बाद करने शुरू कर देंदा है। धन तुहाडी जेब दे अंदर है धन नू वरतना तुहाडी मर्जी है। सवास तुहाडे ने सवास नू वरतना भी तुहाडी मर्जी है। तुहाडी मर्जी है सवासां नू कूड़े दान विच पा दो बिन विच पा दो गार विच बैग दे अंदर इन्हां नू पाओ ते तुहाडी मर्जी इन्हां दे नाल कोई चंगा वणज व्यापार कर लो। सवासां दे नाल ही वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जुड़िया जा सकदा है सवासां तो बगैर ते नहीं। सवासां दे नाल ही कामी बनिया जांदा है क्रोधी बनिया जांदा है निंदक बनिया जांदा है। जिस दिन सवास मुक जन कदी किसी ने कहा है कि फलाने दे सवास मुक गए ते सवास मुकन तो बाद फिर भगती दे मुकाम दे अंदर कामयाब होया। नहीं, जीवन अंदर भगती दा मुकाम मिलदा है सवास मुकन तो बाद। नहीं, कदी तुसी सुनिया कि फलाने बंदे नू मरिया ते हो गए ने 4 साल पर वो बड़ा अपराध कमा रहा है पाप कमा रहा है गुनाह कर रहा है। जेड़ा मरी गया सवास ही मुक गया उन कुछ करन जोगा रहा ही नहीं क्योंकि करना सवासा नाल है। अज सवास तुहाडे कोल ने तुहाडी मर्जी है तुहाडी सोच दे मुताबिक इन्हां ने वरतों विच आउणा है। इन्हां नू चंगे पासे वरत लो इन्हां नू मंदे पासे वरत लो इन्हां नू परमात्मा दी याद विच वरत लो ते भावें इन्हां नू निंदा चुगली ईर्षा दे विच वरत लो। सवासा ने कोई इतराज नहीं करना कि मैनू चंगे पासे क्यों वरतना है मैनू मंदे पासे क्यों वरतना है। एक बेनती उदाहरण वजो मैं होर करदा चला। तुसी खरीद के लियाओ कार ते कार लियांदी खरीद के तुसी $1,00,000 दी महंगे पा दी कार खरीद के लियांदी कार नू चलाउणा है तुसी ते हुण कार ने ते मना नहीं ना करना कि मैं वैस्या द्वारे नहीं जाना मैं ते केवल गुरुद्वारे जाना है। कार ने ए भी नहीं कहना कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाना ते मैं केवल पब क्लब दे अंदर जाना है। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਲਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ सवास थोड़े ने जे बंदे नू समझ आ जाए ते संभल बुक भरी ओ बड़ा संभल संभल के कदम फूक फूक के रखदा है फिर सवासां नू अजाई गवांदा नहीं है इन्हां दी संभाल करदा है। अगली पंक्ति विच होर बचन किया कहन लगे जे जाना शहो शहो मैंने पति शहो मैंने परमात्मा। कहन लगे जे जाना शहो नंडड़ा ते नंडड़ा किन्नू कहिंदे ने जिहड़ा छोटा जिहा बाल होवे। जे मैं जानदा कि मेरा परमात्मा बाल सुभाव वाला है बाल बुद्ध वाला है छोटे बच्चे वर्गा सुभाव रखदा है तां थोड़ा माण करें ते मैं भी अपने गुण कर्म दे उत्ते कदी हंकार ना करदा मैं अपने कर्म धर्म संस्कारां नू वेख के हंकारी ना बनदा माण ना करदा। जे मैनू पता लग जांदा कि परमात्मा हंकारी नू पसंद नहीं।

0: ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਅਚੇਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਬੱਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਹ ਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਧਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੱਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੇਵਲ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਗ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੇਚ ਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਬੇਟਾ ਜਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੂ ਬਹੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਦਲਦਲ, ਇਹ ਪਖੰਡ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਗੀਨਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਮਗੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਜੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਖੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। जीसस नू किसे ने प्रश्न किया सी कि जीसस मैं मिलना चाहना रब नू, तू है गौड़ दा पैगाम देन वाला, रब दा संदेश वंडन वाला, ते मैं तेरे को प्रश्न करके पूछ कर दा कि रब नू मिलना होवे ते किवें मिलिया जा सकदा है। कहिंदे ने कि जीसस 2 मिनट वास्ते ना चुप रहा, उन्हें अपनियां नजरां नू चार चौफेरे दौड़ाया पर जवाब ना दिता। सवाल करता कहिंदा है, मेरा सवाल मैं तुहाडे सामने रखिया है, इहदा जवाब देरी क्यों लगी, सोच रहे हो जवाब आउंदा नहीं। वो कहिंदा नहीं, मैं जवाब लभ रहा। उन्हें कहा जवाब लभ रहा कित्थों लभ रहा, तेरे हथ दे अंदर कोई ग्रंथ नहीं, कोई तेरे हाथ दे अंदर शास्त्र नहीं, कोई किताब नहीं, लब कित्थों रहा है। उन्हें आख्या लब जाएगा तेनू दस देंगा कित्थों लब रहा। चार चुफेरे नजरां नू कमाया, एक औरत ने अपनी गोद दे अंदर छोटी उम्र दा बाल चुकिया सी, बाल न्याणा बच्चा, ते जीसस बोल पिया कहन लगा सजना तेरा जवाब मैनू मिल गया। वो कहन लगा किस तरह, कहन लगा ओ जेड़ा छोटा जिहा बच्चा मां दी गोद दे अंदर है ना, उस तरह दा बन जा जे परमात्मा नू मिलना है। ते सवाल करता ने दूजा सवाल कर दिता। वो कहन लगा जीसस मैं सवाल किया सी परमात्मा नू मिलना है किवें मिला, तू अगो जवाब दिता है बच्चे वर्गा बन जा, ते ख्याल कर बच्चे दा कद अजे 2 फुट दा, मेरा कद 6 फुट दा, ते मैं बच्चे वर्गा बना ते बना किवें, अपने आप नू इना छोटा करा तन करके किवें करा। ते कहिंदे ने फिर जवाब आया तन छोटा करन दी लोड़ नहीं, मन अपना कर उस बच्चे वर्गा, जिमें वासना तो रहत कोई निंदा कोई चुगली कोई ईर्षा कोई बुराई बच्चे विच नहीं, तू ही अपने आप नू अंदरों इस तरह दा बना, तन छोटा करन दी लोड़ नहीं, मन नू उस तरह दा बना, जिमें एक पवित्र जिहा मन एक बच्चे दे कोल हुंदा। ते मैं ते डॉक्टर इकबाल दे बोल पढ़ के हैरान होया। डॉक्टर इकबाल साहब कहिंदे ने कि किसी बच्चे के तबस्सम में उतर जाओ, तबस्सम कहिंदे ने बुलियां दी मुस्कुराहट, वो कहिंदा किसी बच्चे के तबस्सम में उतर जाओ तो शायद समझ पाओ कि खुदा कैसा होता है। कहिंदा जे खुदा नू समझना है ना, ते किसे बच्चे दे तबस्सम दे अंदर बुलियां दी मुस्कुराहट दे अंदर उतर जाओ। बच्चे वर्गा मन बनाउणा भगतां नू आया है। भगत किसे जात दे ने, किसे मजहब दे ने, किसे कौम दे ने, किसे धरती ते उन्हां दा जन्म होया। आपां विचार करने आ भी ये नाम देव साहब नू मैं नहीं मनना, ते महाराष्ट्र दे अंदर पैदा होए ने। आपां ये ते कदी नहीं ना किया कि रविदास साहब नू मैं नहीं मनना क्योंकि ये ते बनारस दे वसनीक ने, कबीर साहब नू मैं मत्था क्यों टेकां ये ते बनारस दे वासी ने, फरीद साहब नू मैं मत्था क्यों टेकां इते पाकिस्तान दे रहन वाले सूफी संतां दे अंदरों पैदा होन वाले मुल्तान दे अंदर जम्मे पले वड्डे होए मैं नमस्कार क्यों करा। एक भगत प्यारा लगदा है ते सब नू प्यारा लगदा है, हर दाने सियाने मनुख नू भगत चंगा लगदा है, क्यों भगत दे अंदर वो सारे गुण हुंदे ने जेडे गुण एक बच्चे दे अंदर हुंदे ने। हुण जिन्ने आप बैठे हो हर सूझवान माई भाई दे मन नूं एक बच्चे दी मुस्कुराहट अपने वल खिंचदी है। वह बच्चा काले दा होवे, गोरे दा होवे, हिंदू दा होवे, सिख दा होवे, मुसलमान दा होवे, बच्चा मुस्कुराउंदा सब नूं चंगा लगदा है। बच्चे दी मुस्कुराहट सब नूं अपने वल प्रेरदी है, खिंचदी है। क्यों प्रेरदी है? बच्चे दे अंदर भी उह गुण ने ते भगत दे अंदर भी उह गुण है। मैं फिर बेनती करा इस विषय ते किसी वक्त खुल के बेनती करांगा। हजूर कहन लगे पायो बाल बुद्ध सुख रहे। हुण भगत कबीर साहब जी दा एक बचन भी मैं तुहाडे सामने रखदा चला। भगत जी कहिंदे ने कहो कबीर भगत घर आया। अगला बचन कहन लगे भोले पाए, भोले पन दे अंदर, भोले सुभा दे अंदर, भोले पाए मिले रघुराया। कहन लगे भोले पन दे अंदर परमात्मा मिलदा है चलाक बुद्ध दे नाल नहीं, ते जे चलाक बुद्ध दे नाल नहीं मिलदा ते ताई सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी ने हुक्म फरमा दिता है ना कि ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। ताई ते गल कही ना, ताई बचन किया कि चतुराई किने ना पाया, चतुराइयां चलाकियां नूं छड्ड इस तरह खुदा नहीं मिलना। मिलेगा किवें? पायो बाल बुद्ध सुख रे। बेनती मैं तुहाडे सामने इसे संबंध विच होर रखनी चाहांगा। सजाती मेल ते वजाती मेल, ये मेल हुंदे ने दो तरह दे। सजाती मेल जिहदी जात रलदी होवे, अजे नतीजा ना लियो, गल मैं अगे खोलांगा। विजाती मेल जिहदी जात ना रलदी होवे। जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे ने कि नानक लीन पयो गोबिंद सिउ ज्यो पानी संग पानी। पानी ते पानी, पानी एक नदी दा, एक दरिया दा, ते दूजा पानी जिहदे विच मिलना है सागर दा, इन्हां दोवां दी जात रलदी है ना, इहनूं कह दिंदे ने सजाती मेल। असरा असला रलदा होवे, गुण रलदे होण, सुभाअ रलदा होवे, जात रलदी होवे, इहनूं विद्वानां ने नां दित्ता है सजाती मेल। जिथे गुणा करके बराबरता होवे, गुण मेल खांदे ने, सुभाअ मेल खांदा है, उहनूं सजाती मेल। ते जिथे गुण मेल नहीं खांदे, गुणा दे अंदर मत भेद, विचारा दे अंदर टकराहट है, उहनूं कह दिंदे ने विजाती मेल, जात तो बाहर दा मेल। जे पानी दे अंदर पानी सुटो, पानी पानी दे अंदर मिल जांदा है, ते जे पानी दे अंदर लोहा सुटो ते की लोहा पानी विच मिल जांदा है, पानी दे अंदर पत्थर सुटो तो की पत्थर पानी दे अंदर मिल जांदा है, इह विजाती मेल है। अगर रब नूं मिलना है ते रब वर्गे बन के मिलिया जाएगा, सजाती मेल हुंदा है, वजाती मेल नहीं हुंदा। अगर परमात्मा नूं मिलना है ते परमात्मा वर्गे गुण अपने अंदर पैदा करने पैणगे, मेल तां होएगा। नानक लीन पयो गोबिंद सिउ, पर किवें, जो पानी संग पानी, पानी बन के पानी विच मिलिया जाएगा, पत्थर बन के पानी विच नहीं मिलिया जाना। अपने जीवन नूं पढ़ो, किधरे पानी वर्गा है या पत्थर वर्गा है। किसे नूं चोट ते नहीं पहुंचा रहा, बोल पत्थर वर्गे, वेखना पत्थर वर्गा, हिरदा पत्थर वर्गा, ते मिलना चाहुंदे आ रब नूं, किवें मिले अंदर इन्ना कठोर बज्जर पत्थर वर्गा। ते फिर कहने आ जी शांति ते कोई नहीं मिलदी, रब मिलदा ते है नहीं। 20-20 साल हो गए ने गुरुद्वारे आउंदिआं, कोई गल बनी ते नहीं, तां नहीं बन रही, क्योंकि केवल आ रहे आ, गुणा नूं अपना नहीं रहे। जिन्ना समा गुणा नूं अपनाओगे नहीं, उन्ना समा मेल होना कोई नहीं। खैर, भगत फरीद साहब जी कहन लगे कि जे जाना शहो नंडड़ा, ओ मेरा परमात्मा शहो बाल वर्गा है, नंडड़ा मैंने छोटे बाल वर्गा है, ते मैं उस परमात्मा वर्गा अपने आप नूं बना लेंदा, जीवन दे अंदर चलदिआं चलदिआं रहिंदिआं रहिंदिआं। एक बचन फरीद साहब जी ये कह रहे ने, ते तां कह रहे ने ताकि साडा मेल उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल हो जाए। अगला वचन कह लगे, जे जाना लड़ छिजना पीढ़ी पाई गंढ। जे मैं जानदा कि बुराइयां दे कारण, विकारां गुनाहां दे कारण परमात्मा नालों मेरी विथ पै जानी है, परमात्मा नालों मेरी दूरी हो जानी है, लड़ छिजना, लड़ मैंने पल्ला छिजना, मैंने छुट जाना, मेरा पल्ला रब जी दे हथों छुट जाना, ते पीड़ी पाई गंढ, पीड़ी मैंने पक्की, मैं अपने पल्ले दी रब जी दे पल्ले दे नाल गंढ पा देंदा ते पीड़ी पा देंदा। जद भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे अंदर बची बचे दा आनंद कारज हुंदा है, ते पल्ला फड़ाया जांदा है वर दे हथ दे अंदर, वरदा पल्ला फड़ाया जांदा है सुहागन दे हाथ दे अंदर। पल्ला फड़ के लावां हुंदियां ने ना, चार लावां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच परकर्मा करदे ने, दुल्ला दुल्हन उठ के, लड़की लड़का उठ के, लड़की ने पल्ला फड़िया हुंदा है, ते जे ओह पल्ला फड़े ना जां पल्ला छड्डदा है, ते फिर कादा आनंद कारज, फिर ते कागजी विआह है ना, फिर आनंद कारज कादा होया। इस तरह ही जे परमात्मा दे देश पहुंचना चाहुंदे हो, परमात्मा वर्गे बनना चाहुंदे हो, ते ओदे पल्ले दे नाल अपने पल्ले दी गंढ घुट के बननी पैगी। क्यों घुट के बननी पैगी? क्योंकि भीड़ भड़का बड़ा है, ते भीड़ दे अंदर किधरे मेरी गंढ परमात्मा दे पल्ले नालों खुल ना जाए भीड़ दे कारण। ते भीड़ कादी है? आम लोकां दी भीड़, धक्के मारन वालियां दी भीड़। एक पासे काम अपनी फौज लेके चल रहा है, गंढ नूं खोलण वास्ते यतन करदा है, दूजे पासे क्रोध अपनी सेना लेके चलदा है, ते बची हुई गंढ नूं ओह खोलण दा यतन करदा है, तीसरे पासे निंदा है, हंकार है, मोह है, लोभ है, ये सारे गुना अपनी अपनी फौज लेके तैयार खड़े ने, ते खड़े किस वास्ते ने, तुहाडी जिहड़ी गंढ बजी है ना रब जी दे पल्ले दे नाल उस गंढ नूं खोलण वास्ते। ते खिमा करियो जिहड़े तुसीं धर्म दे राह ते चलण वाले हो ना, धर्म दे मार्ग ते तुहानूं खास ध्यान रख के चलना पैणा। अगर तुसीं ध्यान ना रखिया ते किधरे भी चलदिआं चलदिआं काम दी लपेट विच आ के गंढ अपनी खोल पाओगे, किधरे क्रोध तुहाडी गंढ नूं खोल देगा, किधरे हंकार, किधरे मोह, किधरे लोभ, किधरे निंदा, किधरे चुगली, ए सारे इस ताक दे अंदर ने कि कदों इहदा गंढ नालों ध्यान हटे, जिहड़ी पीटी करके गंढ बद्धी है उहदे नालों इहदा ध्यान परां हटे ते असीं इहदी गंढ नूं खोल दईए, इहनां दोवां दे अंदर दूरी पैदा कर दईए, पति ते पत्नी दे अंदर, परमात्मा ते आत्मा दे अंदर असीं ना दूरी बना के रख दईए। हुण दूसरी बेनती, आपां अक्सर एक गल कहिंदे आ और पंजाबी दे अंदर ठेठ भाषा विच इह गल आम वरतों विच आउंदी है, बई जे मैनूं पता हुंदा बई मेरा इत्थे आउण तों बाद नुकसान ही होणा है ते मैं इत्थे कदी आउंदा ही ना, कहिंदे आ ना बई जे पता हुंदा, जे मैनूं पता हुंदा कि आ चीज खाण दे नाल मेरे तन दे अंदर रोग वधना है ते इह पदार्थ मैं भुल के मूंह तक लै के जांदा ही ना, इह कहिंदे ना जे पता हुंदा, जे पता हुंदा भी ऐस मार्ग ते चलन तो बाद अज एक्सीडेंट होना है ते मैं इस रोड दे उत्ते कदी निकलदा ही ना, जे पता हुंदा कि बोस दे सामने ए कुछ बोलन तो बाद रोजी रोटी बंद होनी है ते मैं कदी गला उच्चा करके बोलदा ही ना, ये कहने ना भी जे पता हुंदा, ये ना कहना पै कि जे मैनू पता हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बाणी रच के साडी चोली दे अंदर पाई तेरी जे नूं खत्म करन वास्ते, तेनू ए बहाना ना मिले कि तू ए कह ही ना कि जे मैनू पता हुंदा। सतगुरु जी बयान कर रहे ने इस तरह हुंदा है, तेरी गंढ नूं खोल देंगे ते सारे दे सारे औगण, तू ए ना कहे कि जे पता हुंदा, सतगुरु पता दस रहे ने ते पता बोलदिआं, पता सुनदिआं, पते नूं जाणदिआं, ज्ञान दीआं गल्लां करदिआं, ज्ञान दीआं गल्लां सुनदिआं, ज्ञान नूं पढ़दिआं पढ़ाउंदिआं, फिर भी बंदा गहरी खड्ड वकारां दी खड्ड दे अंदर अपना आपा डेग के नष्ट कर ही लैंदा है। क्यों कर लैंदा है? हालां इहनूं पता भी है। ते कबीर साहब ने ते ऐलानिया कह दिता, उह कहिंदे ने मन जानत सब पात, जानत ही औगण करे। इह नहीं कह सकदा मैनूं पता नहीं है, पता तैनूं है, तू जान के औगण करदा है। भगत कबीर जी इस तरह कहिंदे ने, मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। कहन लगे ओ बंदा खूह विच डिग पै जिदे दो नेत्रां विच वेखण वाली जोत नहीं, जिन्हों आपां नेत्रहीन कह दीए, अन्ना कह दीए, अन्ना चलदा चलदा खूह विच डिग पै, लोक हमदर्दी करनगे। क्यों करनगे? भी ए बेचारा नेत्रां तो बगैर है, नेत्रहीन है, इहनूं दिसदा नहीं, तां खूह दे अंदर जाके डिगा है। ते जे नेत्र भी काम करदे होण, होवे भी दिन दा प्रकाश, रात दा हनेरा होवे, ते कोल चानने दा इंतजाम होवे, लालटेन हथ विच होवे, ते फिर भी खूह विच डिग पवे, ते फिर ते लोक हमदर्दी नहीं ना करनगे, फिर गालां ही कढ़नगे ना, वेख के नहीं चलिया जांदा, मोटे मोटे अखां लै के चल रहा है, इन्हां नेत्रां तों कम लै वेख के चल। भगत जी कहन लगे तेनू दिसदा है, तू जानदा है, हाथ दीप हाथ दे अंदर चानना है, दीवा है, फिर भी खूह दे अंदर डिग रहे हैं, गलती तेरी है। गुरु नूं दोष ना दे के सतगुरु तू किरपा नहीं कीती, गुरु ने किरपा कर दिती है, तू किरपा लैण दे योग आ उह बाणी नहीं रहा। गुरु ने किरपा कीती है, तुहानूं जन्म दिता है ना, गुरु ने किरपा कीती है ते तुहानूं गुरुद्वारे आउण दा समां बख्शिया है ना, हुण कुछ आप भी ते करना चाहीदा है। कोई बंदा परोस के भोजन तुहाडे थाल दे अंदर तुहाडे सामने लिया के रख दवे, चलो मन लो कि कोई बुरकी बना के तुहाडे मुंह विच भी पा दवे, खाना ते तुहानूं ही पैणा है ना, अंदर लैके ते तुहानूं ही जाना पैणा है ना, कुछ ते करना ही पैणा है। जिहड़े नहीं करदे उहनां दी उंगली सिधी उठदी है जी गुरु ने किरपा नहीं कीती, गुरु दी किहड़ी किरपा मंग रहे हो, मनुखा जन्म तुहानूं दित्ता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे महान गुरु दित्ते ने, ते गुरु दी कदरो कीमत नूं ना जानो ते दोष गुरु दा नहीं, दोष साडा अपना है। खैर भगत जी कहिंदे ने जे जाना लड़ छिजना, जे मैं जानदा हुंदा कि विकारां दे नाल मेरा लड़ छिज जाना है, बनी हुई गंढ खुल जानी है, पीटी पाई गंढ, गंढ नूं मैं होर घुट के बनदा ते उस गंढ दा ध्यान रखदा, इस गंढ नूं कोई काम क्रोध लोभ मोह खुलण दा यतन ते नहीं कर रहा, पीटी पाई गंढ तै जेवड मैं नाहे को सब जग डिठा हंड। हे मेरे साईं वाहिगुरु निरंकार परमात्मा जी, मैं सारा जगत ना हंड के वेख लिया, हंड मैंने चल के, हंड मैंने तुर फिर के, विचर के, मैं सारी दुनिया घूम फिर के वेख ली, तेरे वर्गा ना ते कोई दयालु मिलिया ते ना कृपालु मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई मददगार मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रक्षक मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रिजक दाता मिलिया, रोजी दहिंद मिलिया, तेरे वर्गा कोई सज्जन नहीं मिलिया, सब जग डठा हंड। भगत जी कहिंदे ने गली सो सज्जन भी एक टुंडेंदी ना लहां तुखां ज्यों मली, गली बातें हौसला देन वाले मलम पट्टी करन वाले भी सज्जन मिलदे ने, पर उस रोग नूं मिटाउण वाला दर्द तों राहत देण वाला ते भगत जी कहिंदे ने कोई बिरला बिरला ही मिलदा है ना। कबीर साहब भी कहिंदे ने कबीर सब जग हों फिरियो, मंदल मंदल मैंने कंधा मुढ़ा, मंदल कंध चढ़ाए, कंध मैंने कंधा, मंदल मैंने टोल, कहन लगे मैं टोल अपने कंधे दे उते रख के बजा के दुनिया नूं घूम फिर के वेख्या, मंदल कंध चढ़ाए, कंधे दे उते मंदल रख के, कंधे दे उते टोल रख के, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए, कहन लगे कोई किसे दा नहीं मैं ठोक बजा के वेख लिया, परख पड़ताल करके वेख लिया, आखिया तैं जेवड़ मैं नाहे को, तेरे वर्गा साईं जी रब जी कोई भी नहीं है, नाहे को दुनिया दे अंदर तेरा सानी कोई नहीं, सब जग डिठा हंड, ते ए गल मैं सारे जगत नूं हंडन तो फिरन तो विचरन तो बाद कह रहा, तजर्बा करन तो बाद कह रहा, हुण ए मर्जी साडी है कि जिस खुदाबंद करीम वास्ते भगत जी कह रहे ने तैं जेवड मैं नाहे को, उहदे नाल जुड़े रहना है या उहनूं छड के किधरे सज्जे खब्बे भटकना है, ए मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब ते उस दीन दयाल दीआं कथा कहानियां कर करके साडी झोली दे अंदर उपदेश पा रहे ने, तो ये दो श्लोक जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन कीता गया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, जिन्ने माई भाई श्रोते गुरु की गोद दा आनंद लै रहे हो, सबना दे मना अंदर सतगुरु गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अज्ञानता वाला हनेरा दूर करन, तमाम
1: हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरू, हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करू, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै, वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख आपनडे गिरीवान मह, सिर नीवा कर दे

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन श्लोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक, देख फरीदा जो थिया दाढ़ी होई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाढ़ी होई पूर। तेरे दाढ़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए, पवर गए बग बैठे आए, काले रंग

रंग नवेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचै सब को एहु पिरम प्याला खसम का जय पावे तैं दे फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कचल रेखना सहंदियां से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदियां चांकेंदियां

हरिदा रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भुख। जिन्ना खादी चौपड़ी, घने सहन गे दुख। रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो। हरिदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो। हरिदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों तीन सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुध। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठियां चीजां नूं लै रहे ने। नंबर एक दे उत्ते शक्कर, नंबर दो दे उत्ते खंड, नंबर तीन दे उत्ते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नूं। मैं अर्ज कीती सी कि सब तो पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू हुई। इनू ताई मिसरी कहा जाता है क्योंकि मिश्र दे अंदर सब तो पहला बननी शुरू हुई कुजे दी मिश्री। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो। माखियो दा मतलब शहद, मांझा मझा दा दुध। कहन लगे सारियां वस्तुआं मिठियां ने पर जे रबी रस दे मुकाबले दे उते इना विचो कोई भी उदाहरण बनाईए ते ओ रब जी दी तोहीन होएगी। जे ए कहिए कि रब जी दे नाल जुड़न तो बाद जेड़ा रस मिलदा है मिठास मिलदी है ओ शक्कर वर्गी है तां रबी गुणा दी रब जी दे नाम दी तोहीन है। जे कहिए ओ खंड ते मिश्री वर्गी है ते तां वी खंड ते मिश्री दी मिठास परमात्मा दी मिठास नालों बहुत थले है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। अगा कहन लगे ना उदी मिठास दे बराबर माखियो ना मज दा दुध, कुछ भी उदी उदाहरण नहीं है, वो अपनी उदाहरण केवल आप है। अगर दुनिया दे अंदर आप कोही नूर हीरे दी उदाहरण लियानी चाहो ऐस जगत दुनिया दे अंदर जिथे आपां वस रहे हां ते कोही नूर हीरे दी एग्जाम्पल दुनिया विच दूसरी नहीं है। उहदे वर्गा हीरा ही दूजा नहीं ते उहदे उदाहरण कौन कोई बने। कोही नूर अपनी उदाहरण आप है। इस तों अगे होर चलो, चंदन दा रुख दुनिया दे अंदर केवल एक ही जगह दे उत्ते पैदा हुंदा है, हिंदुस्तान दे अंदर कर्नाटका स्टेट विच। ते चंदन अपनी उदाहरण आप है, चंदन वर्गा कोई भी दूसरा वनस्पति दा बूटा नहीं है। किन्नू कहोगे कि एदी समेल, एदी सुगंध, एदी मिठास, एदी तासीर चंदन वर्गी है।
कोई भी बूटा उस तरह का असरदायक नहीं जिवें चंदन का बूटा है। चंदन अपनी उदाहरण आप है, समुंदर अपनी उदाहरण आप है। जे समुंदर की गहराई का जिक्र करना होवे ते की कहोगा, की कहोगे समुंदर किदे वर्गा डूंगा। चलो जे आम गहरी खड्ड का, गहरे तालाब का, गहरी झील का जिक्र करना होवे, असी कह दिने ए चीज गहरी है समुंदर वर्गी, चीज गहरी है सागर वर्गे। ते जे सागर नूं बयान करना होवे ते उदाहरण की दोगे? सागर अपनी उदाहरण आप है, हिमालय पर्वत अपनी उदाहरण आप है, आकाश अपनी उदाहरण आप है, इहदे वर्गा कोई दूजा नहीं। परमात्मा अपनी उदाहरण आप है, परमात्मा वर्गा कोई दूजा नहीं। कित्थों उदाहरण लभ के लियाईए कि परमात्मा इन्ना उच्चा है? अगर ये कह दिए कि परमात्मा हिमालय पर्वत वर्गा उच्चा है तो फिर हिमालय पर्वत की एक सीमा है। हिमालय पर्वत ते आए दिन कोई ना कोई विज्ञानी दे कदम टिके होंदे ने हिमालय पर्वत दे उते। हिमालय पर्वत नूं कोई चल के सर कर लैंदा है तो फिर ते परमात्मा भी बहुत छोटा होया अगर एक हिमालय पर्वत वर्गा है। जे ये गल कहो कि परमात्मा सागर वांग डूंगा है तो सागर दी गहराई सीमा दे अंदर है। मैं अक्सर एक बेनती करिया करदा कि जो मापन विच, जो तोलन विच ते जो गिनन विच आ रहे उन्हों बेअंत कहने दी लोड़ नहीं है। जो मापिया जा सकदा है बेअंत नहीं है। वो इस तरह नहीं कि उहदा पारावार नहीं, जो गिनिया जा सकदा है वह बहुत वड्डा नहीं, गिनती दे अंदर है। जो मिनिया तोलिया जा सकदा है वह भी बहुत वड्डा नहीं, मिनती दे अंदर, पैमाने दे अंदर, तोल दे अंदर है। परमात्मा ना गिनती विच है, ना मिनती विच है, माप तोल विच नहीं, ते ना परमात्मा होर किसी पैमाने दे अंदर ही कैद हुंदा है। परमात्मा गिनती मिनती तोल पैमानिया तो बाहर है। तो हुण ये कहना परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। परमात्मा पहाड़ वर्गा उच्चा है, परमात्मा दी तोहीन होएगी। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने एक बचन जरूर फरमाया है, वो कहन लगे एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा तेरी उदाहरण नहीं है। हां कोई तेरे नाल जुड़दा जुड़दा चलदा चलदा तेरे वर्गी ऊंचाई नूं पा लवे ते कह सकने आ कि ओ तेरी रमज नूं, तेरे विस्तार नूं जान पावे, पर जिन्ना ने जानिया है ओही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। गुरु साहिबान ही ते कह रहे ने कि तू बेअंत है, भगत जानी ते कह रहे ने कि तू बेअंत है। तो मैरज कर रहे सां परमात्मा दे उत्ते दुनियावी कोई भी उदाहरण लागू हुंदी नहीं। परमात्मा दे बराबर किस चीज नूं खड़ी करोगे? कहोगे परमात्मा समुंदर वर्गा डूंगा है ते सब तों ज्यादा डूंगा अटलांटिक ओशन है, और वो किन्ना है? 39,000 फुट डूंगा, इस तों वध डूंगा नहीं। हिंद महासागर 39,000 फुट डूंगा है, इस तों ज्यादा नहीं। तो की फिर परमात्मा 39,000 फुट दे उत्ते जाके खत्म हो जांदा है? परमात्मा इत्थे मुक जांदा है? उदाहरण जदों भी दित्ती जांदी है उदों उहदी दित्ती जांदी है जेड़ा अगे खड़ा होवे। जे ते बुराई दी उदाहरण देनी है ते बुरा मनुख जिन्नू कह रहे हां उहदे नालों अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। ते जे चंगियाई दी उदाहरण देनी है ते चंगे पण दे अंदर भी जेड़ा अगे खड़ा होवे, उदाहरण उहदी। आप अपने बच्चियां नूं जदों तालीम दी विद्या दी उदाहरण देंदे हो ते कदी इस तरह उदाहरण दिती है कि बेटा साढ़े पड़ोसियां दा बच्चा या साढ़े रिश्तेदारां विचों फलाना बच्चा लगातार एक क्लास दे अंदर 5 साल ला के तां अगे सरकिया, तां अगे होया, 5 वार एको क्लास दे अंदर फेल होया, उहदे उदाहरण तुसी बनाओगे? बल्कि उहदी उदाहरण बनाओगे जो 1 साल दे अंदर 2-2 क्लासां करदा रहा, जो बड़ी जल्दी डिग्री नूं पाउण वास्ते पहुंच बना चुका है, उदाहरण ओदी बनाओगे। पढ़ाई दे अंदर उदाहरण ओदी जो चलदा चलदा बहुत जल्दी मुकाम दे उत्ते पहुंचिया ते पूरी तरह कामयाब होया। अगर आप अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दिओ
एक दुकानदार एक व्यापारी अपने बच्चियां नूं कारोबार दी उदाहरण दवे तो की कदी उहदी उदाहरण बनाईए। जिहड़ा बंदा अपनियां कमजोरियां दे कारण कारोबार विचों फेल हो चुका है उहदी उदाहरण बनाओगे जो कारोबार नूं आरंभ करदा है जीरो तों पर उह चंद ही दिनां दे अंदर कारोबार दा हीरो बन जांदा है कारोबार दे अंदर बहुत बुलंदियां नूं छू लैंदा है। आप उदाहरण उहनूं बनाओगे बेटा कारोबारी बनना है ते फलाने वांग चलिया सी कोल कुछ नहीं अज सब कुछ कोल है पढ़ाई करनी है ते फलाने वांग फलाना डॉक्टर बन गया फलाना साइंटिस्ट बन गया ए बन गया ओ बन गया उदाहरण ओदी बनाओगे। ठीक इस तरह धर्म दे राह दे उत्ते मैनूं समझ नहीं आउंदी कि जदों भी किसी दे नाल धर्म दी चर्चा आरंभ करिए ना ओ उस बंदे नूं उदाहरण बना के पेश करदा है जिहड़ा धर्म दी दुनिया दे अंदर बिल्कुल नखित ते डिगा चकना चूर होया बंदा है। किसी नूं कहिए बई अमृत पान करना चाहीदा है ओ कहिंदा है हां वेखे ने गात्रे कृपान पा के पब्बां क्लबां दे अंदर रुलदियां नूं कईयां नूं वेख्या जो अमृत तारी बन के बुलंदी दे उत्ते पहुंच चुके ने ओदी उदाहरण नहीं बनाई वेखण वाले ने उदाहरण किनूं बनाया है जो डिग चुका है दुनिया दे अंदर उन्हों उदाहरण बना रहे हैं जो चढ़ रहा है कामयाबी दी मंजिल नूं धर्म दे अंदर आपां उस बंदे नूं उदाहरण बना रहे हैं जो डिग रहा है ते डिगदा डिगदा बिल्कुल चकना चूर हो गया उदाहरण उन्हों बना रहे हैं कि धर्म दे अंदर कोई भी बंदा तुहानूं सक्सैस हुंदा नजर नहीं आ रहा कामयाबी वल नूं वधदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है इस गल दे अंदर रंचक मात्र झूठ नहीं कि धर्म दी दुनिया दे अंदर पखंड हदों ज्यादा छा गया थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा छा गया बाहरों कुछ होर दिसदे ने अंदरों कुछ होर हुंदे ने पखंड जोर फड़दा जा रहा वो बंदे धर्म नूं टाल लाउण दा काम कर रहे ने क्यों काम कर रहे ने क्योंकि तुसीं जुड़दे उहनां दे पहरावे नूं उहनां दीआं गल्लां बातां नूं वेख के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल सीधा जुड़दे ने ओ बंदे जद तुहानू किसे पाप अपराध दी खड्ड विच डिगे होए मिलदे ने ते तुसी सोच लैंदे हो धर्म हुंदा ही इस तरह दा है धर्मी सारे हुंदे ही इस तरह दे ने बहुत पखंड शिखर दे उत्ते है पर फिर भी कोई ना कोई बंदा तुहानू बिल्कुल नेक नीति दे नाल चलदा होया ते धर्म दे अंदर कामयाब हुंदा होया अवश्य नजर पएगा पर जिहड़े धर्म दा लिबास पा के पखंडी बन गए ने उन्हां वास्ते मैनूं एक उर्दू दा शेर चेते आउंदा है एक अदीब इस तरह कहिंदा है कि खुदा से मुनकर होती है दुनिया खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकर होती है दुनिया खुदा के बंदों को देखकर कि जिस खुदा के बंदे ऐसे हैं वो खुदा कैसा होगा। आम लोकां नूं असीं वेखने आ वो बाहरों कुछ होर ने पहरावे करके दिसदे ने कि बड़े चंगे ने पर पहरावे दे अंदर उदों ही समझ आउंदी है कि जदों रावण निकल आउंदा है पहरावे विचों समझ उदों आउंदी है कि अंदर कुछ होर ते बाहर कुछ होर। खरे मेरा विशा नहीं गल विचकार आ गई अर्ज मैं कर रहा सां कि जे किसी बहुत गहरी चीज का जिक्र करना होवे ते कह दईदा है समुंदर वर्गी जे उच्ची चीज का जिक्र करना होवे ते कह दईदा है पहाड़ वर्गी जे किसी का मुख बड़ा सुंदर होवे ते उन्हों उदाहरण देनी होवे भी इहदा मूंह इन्ना सुंदर मुखड़ा इन्ना सुंदर जिवें चंद्रमा हुंदा है क्योंकि सोहणियां दा सिरताज चंद्रमा नूं बयान कीता गया है ते भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी नूं मैं पढ़िया ते पढ़ के हैरान होया कहण लगे लोको जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखड़े दी तुलना चंद्रमा दे नाल कर रहे हो ना गुरु गोबिंद सिंह दी तोहीन कर रहे हो। हुण गुरु गोबिंद सिंह दी उदाहरण

अवतार वर्गे फलाने पैगंबर वर्गे वड्डे ने तो किस वड्डे ने किस दे वर्गे वड्डे ने जो ना तो अगे खड़ा है ते अगे गुरु नानक साहब जी तो केवल निरंकार है होर कोई अगे है नहीं। तो उदाहरण देनी पई निरंकार दी। अर्ज मैं कर रहा सा भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने कि जेडे कवि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सुंदर मुखड़े की तुलना देंदे ने चंद्रमा दे नाल गुरु गोबिंद सिंह की तोहीन करते हैं। फिर पूछा गया भाई नंद लाल साहब तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां विचों सिरमौर कवि हो, पहली कतार दे अंदर बह के लिखण वाले बोलण वाले कवि हो, तुसी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखड़े दे संबंध विच कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब कहिंदे ने बदरा दरपेश रुखत शर्मिंदा अस्त। बदरा बदरा मैंने चंद्रमा कहन लगे बदरा दरपेश रुखत शर्मिंदा अस्त। लोको तुसी उदाहरण देंदे हो कि गुरु गोबिंद सिंह दा मुखड़ा इन्ना सुंदर जिवें चंद्रमा, ते मैं ए कहना कि चंद्रमा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। भाई नंद लाल साहब जी दी अपनी सोच अपने विचार अपने ख्यालां दी उच्ची प्रवाज। कहिंदे ने मैं ए कहना कि चंद्रमा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मुखड़े दे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। ते हुण चंद्रमा नूं रोशनी कित्थों मिल रही है? सूरज कोलों। जिवें पाणी दा केंद्र सागर है, पाणी सरोवरां विच होवे, पाणी झीलां विच होवे, पाणी नदियां विच होवे, पाणी तलाबां विच होवे, जिथे भी पाणी है पाणी दा मरकज पाणी दा केंद्र केवल ते केवल समुंदर है। रोशनी जिथे भी है चाहे वह ट्यूबा विच है बल्बा विच है या तारे चमक रहे ने चंद्रमा चमक रहा है, रोशनी जिथे भी है सूरज की रोशनी है। ते अगली पंक्ति विच भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने खुर्शीद जहां हम बंदा अस्त। खुर्शीद फारसी विच खुर्शीद कह देंदे ने सूरज नूं। पहली पंक्ति विच कहिंदे ने बदरा दरपेश रुख शर्मिंदा अस्त, चंद्रमा तेरे सामने आण के शर्मिंदा पै जांदा है। ए गुरु गोबिंद सिंह चंद्रमा तेरे सामने आण के शर्मिंदा हो जांदा है। अगा कहिंदे ने चंद्रमा नूं जिथों प्रकाश मिल रहा है सूरज, ओ जिहड़ा सूरज है जहान नूं प्रकाश देण वाला खुर्शीद जहां हम बंदा अस्त। ए गुरु गोबिंद सिंह तेरा त्यों भी बंदा, बंदे दा मतलब गुलाम, तेरे सरूप दा ओ भी गुलाम है, तेरी सुंदरता दा ओ भी गुलाम है। तो भाई नंद लाल साहब जी नूं नहीं प्रवान होया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी उदाहरण दित्ती जाए ते दित्ती जाए चंद्रमा दे अंदर। भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने चंद्रमा दे अंदर दाग है पर तेरे अंदर कोई दाग ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह तू पूरा निर्मल है, तेरे अंदर कोई दाग नहीं। एक मैं होर बेनती करदा चला क्योंकि अज दे सलोक दे अंदर उदाहरणा ने, ते मैं तां एक कुछ उदाहरण अपने वालों तुहाडे चरणा विच रखण दा यतन कर रहा क्योंकि अज दे सलोक विच भगत जी कहिंदे ने सक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन दुध। ये सारियां चीजां अपनी जगह ते मिठियां ने पर रब जी तेरे बराबर इन्हां विचों कोई भी नहीं है, तेरे नेड़े तेड़े कोई भी पूजन वाली नहीं है, तेरे बराबर कोई भी नहीं। तां मैं उदाहरण दे रहा अगर किसी दे गले दे अंदर मिठास बड़ी होवे बोल बाणी बड़ी मिठी होवे आप दो गल्लां कहिंदे हो इहदी आवाज है मिश्री वर्गी, इहदा मतलब मिश्री मिठी हुंदी, इहदी आवाज है कोयल वर्गी ते कोयल जदों बोलदी है उदों मन नूं खिच पाउंदी है मोह लैंदी है। कोयल दा बोलना कोयल दा तराने गाउणा कोयल दी आवाज मना नूं धू पाउंदी है। पर किसे दा गला खराब होवे बोली उहदी कन्नां नूं सुखावे ना, उहदी बोली कौड़ी होवे बोली फिक्की होवे ते बोल होवे भी दुरुस्त ना, तुसीं उहदे बोल वास्ते कह दिंदे हो इहदा बोल कां वर्गा। हुण कां ते कोयल दोवां दा रंग ढंग ते इक्को जिहा है, पैरां तों सिर तक कोयल दा जामा काला है ते पैरां तों सिर तक कां दा जामा काला है और तकरीबन तकरीबन दोवां दी शक्लो सूरत आपस दे अंदर मेल खांदी है। कोयल ते कां तकरीबन मेल खांदे ने, आकार वजन इक्को जिहा हुंदा है तकरीबन, पर एडा वड्डा अंतर के कोयल नूं

जवानी तो बाद बुढ़ापे का दौर आया है, ते बुढ़ापा भी मेरा बीत रहा है, बुढ़ापा भी मेरा जान दे किनारे दे उते है। निरंकार मिलिया ते तू अजे भी नहीं, चिंता बन गई है कदों मिलेगा। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, इह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास, आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। निरंकार आशा एक ही है, बाकी उम्मीदां बाकी इशावां पिछे रह गईयां ने, बाकी इशावां दा वेग कमजोर पै गया है। इको ही आशा इको ही तांग बाकी है, तांग एही है निरंकार तेरा ते मेरा मिलाप हो जाए। मैनू मुद्दत हो गई, कई जन्म बीत गए, तेरे विछोड़े दा सल सहन करद्या करद्या, विछोड़े दा दुख हंडाउंद्या हंडाउंद्या, हुण मैं अरदास भी करदा उम्मीद भी करदा तू मिल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बड़े जन्म हो गए ने विछोड़े दे अंदर, हुण ते मेरी बेनती प्रवान कर। तो फिर इस तरह भी कहिंदे ने भगत रविदास साहब जी कि निरंकार तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर, अपत्यार क्या कीजै। मेरे वर्गा दीन कोई नहीं है, दुखी कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, ते तेरे वर्गा निरंकार दयालु भी कोई नहीं है। हुण कितनी बेहबलता कितना वैराग हिरदे दे अंदर उठिया होएगा, जो खुद नू कह रहे ने मैं बहुत नीवा, परमात्मा तू मेरे सामने बहुत उच्चा। तो कहन लगे अब पतियार क्या कीजै, हुण मेरा अजमाउणा कीए पतियाउणा कीए, मेरी परखी करनी है। बचनी तोर मोर मन माने जनको पूरन दीजै, जद मेरा मन मानी गया तेरे बचना नू, मेरा मन सहमत हो ही गया तेरी बाणी दे नाल, मैं पूरी तरह तेनू समर्पण कर ही दिता है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्नीए पाई है, मैं हुक्म मन भी रहा, तन दी पेटा मन दी पेटा तन दी पेटा तेरे चरणा विच रख दिती है। तो हुण मैनू अजमाउणा की होया, तू ते अंतर जामी है अंदरों जानना है, हुण मैनू की पत्याउणा है, की पत्यार कर रहा है मेरी। तो कह रहे ने फरीदा चिंत खटोला, मैं परमात्मा तेरा मलाप नहीं होया, इस विषय नू आधार बना के जेडी चिंता बनी, पता नहीं इस जन्म दे अंदर भी मिलेगा या इस तरह ही जाना पाएगा, खाली हाथ ही मुड़ना पाएगा, इनू मैं मंजी बना लिया। चिंत खटोला वाण दुख, तो हुण परमात्मा दा विछोड़ा है, ते उस विछोड़े दे अंदर एक रस भी है, विछोड़े दे अंदर एक दुख भी है। विछोड़ा आम जिहड़ा दुनियावी विछोड़ा हुंदा है, इहदे विच रस नहीं हुंदा, इहदे विच ही कल्ला दुख हुंदा है। मां धी दा विछोड़ा, पिता पुत्र दा विछोड़ा, भाई भाई दा विछोड़ा, पति पत्नी दा विछोड़ा, मित्र मित्र दा विछोड़ा, धन दा विछोड़ा, तंदुरुस्ती दा विछोड़ा, या होर तरह तरह दे विछोड़े, इस विछोड़े विचों केवल दुख मिलदा है, सुख नहीं, कोई रस नहीं, केवल दुख, इकला दुख। परमात्मा दा विछोड़ा इस तरह दा विछोड़ा है, इथों दुख भी मिलदा है, ते इथों एक रस भी मिलदा है। दुख मिलदा है बहुत वड्डा, रस मिलदा है बहुत वड्डा, दोवें चीजां इकट्ठियां मिलदियां ने। रस परमात्मा नालों टुटन नहीं देंदा, दुख एहसास बनाई रखदा है कि परमात्मा नूं मिलन दा यतन प्रयतन होर कर, जोरदार कर, मंग कर, अरदासां दे विच लगा रह, साधना दे दौर विचों गुजरदा रह। मेहनत मुशक्कत करन वास्ते दुख प्रेरणा करदा है, ते जुड़े रहन वास्ते विचकार जो काम करदा है, वो मिलिया होया रस काम करदा है। परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस मिलदा है, ते नाल दुख मिलदा है। विछोड़े विचों मिलदा दुख है, परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस भी मिलदा है। यही कारण है कि भगत फरीद साहब जी कहन लगे वाण दुख, चिंता नू मैं मंजा बना लिया है, ही हां सेरू बना लिया है, पावे बना लिया है, ते वाण फिर उस मंजे नू बुनना भी ते है, वाण भी ते चाहिदा है, ते फिर वाण बना लिया परमात्मा, जो तेरे ते मेरे विछोड़े विचों दुख मिल रहा है, उनू मैं वाण बना लिया है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेप, हुण मंजी ते तैयार हो गई, मंजी दे पावे चाहिदे ने,

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अतः संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर

ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤੀ ਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਪੀ, ਕੀ ਪੁੰਨੀ, ਕੀ ਐਬੀ, ਕੀ ਸੰਤ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਕੀ ਪੰਛੀ, ਕੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੀ ਪਹਾੜ, ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਪਏ। ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਾ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਉੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਏ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਏ ਨਿਰਮਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਏ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਸ਼ੀਤਲ ਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਏ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਏ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਨੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕੋਗੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਮੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਮੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਏ, ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਗਲ ਦਾ ਖੱਟਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁੰਮੇ ਦੇ ਵੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਫਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਮਲ ਇੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੱਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਬਿਰਤੀ ਆਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਏ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਏ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਘਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਏ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀ ਜੋ ਤਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤਪਦਾ ਤਪਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਪਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੰਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਣੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਪਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਬ ਨਾ ਲਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ,
जिदे चरणा की धूर गुरु अर्जन साहब मंगते ने, जिदे चरणा के जोड़े भाई गुरदास बनते ने, जे वह सिखी सीखनी चाहना है तो सब तो पहला तेरे अंदर पानी की तरह निम्रता होनी चाहिए। पहला लक्षण ही एवे कि धरती पैरां हेठ है, जिन्हें कु लोग निम्रता विच रहिंदे ने सजना तू ओदू वध निम्रता विच आ जाई। धरती पैरां हेठ है, कहन लगे धरती हेठ वसंदा पानी, जिवें पानी ने सारी धरती नूं निम्रता विच चुकिया है, तू इन्ना कु निम्रता विच आ जाई कि पानी की तरह तू निम्रता विच आ जाएगा। सिक्खी का पहला लैसन ही एवे कि तेरे अंदर निम्रता होनी चाहिए। जे तेरे अंदर निम्रता नहीं तो याद रखी बाबे ने अगे सिक्खी का पाठ तेनू अगला सबक देना ही नहीं, पहला सबक तेनू यह पढ़ना पैना तू निम्रता विचार। यही कारण जदों मेरे हजूर के चरणों में कोई भी आंदा सी ना तो एक गल कहनी सिखा भांडे मांज, एक गल कहनी सिखा तू तप्पड़ झाड़, एक गल कहनी सिखा तू लंगर वरताई। चेते रखियो पंगत का बड़ा आनंद जे। मैं बड़ी सोहनी गल गुरमुख प्यारे तो सुनी, वह कहिंदा मैनू एक गोरे ने गल कही, कहिंदा जदों असी तप्पड़ ते बैठ के हथ करांगे ना प्रशादा मंगण लई उदों अद्धी हौमे मर जाएगी कि सतगुरु असी तेरे दर दे भिखारी तेरे दर ते मंगते हां। खैर मैं अर्ज करा, वह कह रहे ने भाई गुरदास धरती की तरह निम्रता विच आ जा। साहब उहनूं जोड़ियां दी झाड़ू दी तप्पड़ दी सेवा दिंदे ने ते निम्रता विच किन्ने कु वड्डे गुण ने। गुरु अर्जन साहब ने एक पवित्र बचन कीता है, पहला सिक्खी दा गुण ए वे तू चुक जा निम्रता विच आ जा। सतगुरु कहिंदे ने जदों मैं अपने पिता गुरु रामदास जी कोल टिकिया सा ना ते उन्हां ने एक गल कही, कहन लगे पुत्र अर्जन देव जे तू वकारां तो बचना है, जे दुश्मना दी ईरखा तो बचना है, जे तू इन्हां वैरियां तो बचना है, एक काम कर मैं तेनू कुछ हथियार देने चाहना वा ते इन्हां शस्त्रां नूं तू सांभ के रखी। पुछा केड़े शस्त्र, कह लगे एक तां गरीबी दी मैं तेनू गदा देनी चाहना वा, गदा दर ते गुरज, मैं तेनू गरीबी दी गुरज देनी चाहना वा। गरीबी दर ते निम्रता, सिक्खी दा पहला गुण ही एवें कि निम्रता होवे, तेनू मैं गरीबी दी गदा देनी चाहना जिस गुरज नाल तू जालम दा वैरी नाल टक्कर लै सके, ते दूजा मैं तेरे हाथ विच खंडा पकड़ाना चाहना। ते पुछया महाराज खंडा केड़ा, ते साहब ने बचन कीता, कहन लगे गरीबी गदा हमारी, धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी की गदा हमारी। कहन लगे खन्ना सगल रेन शारी, सब ते चरणा दी धूड़ बन जा, ए तेरे वास्ते खंडे दा कम करेगा तू निम्रता सिख ले। क्योंकि भाई गुरदास कहिंदे ने सिक्खी दा पहला गुण ही एवे तू निम्रता विचार। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी, तिस आगे पो ना टिकै विकारी, ओदे अगे किसे विकारी ने टिकना। ते साहब कहिंदे ने गुर पूरा ए गल सारी, मेरे पूरे गुरु ने एक गल समझा दिती कि सजना इन्नी निम्रता विच आ जाई जे तू सिक्खी विचों कुछ कमाना चाहना है। तां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के आधार से मैं केवल पहली पंक्ति ते अर्ज करनी चाहना, इस गल नूं आपां खोल सकीए कि निम्रता तो बिना सिक्खी कमाई नहीं जांदी। हजूर दे बचन पढ़ने आ ना ते कबीर साहब दा एक पावन पवित्र श्लोक आउंदा है, कहिंदे ने देख वाहिगुरु ने संसार नूं इस तरह बनाया कि जिवें मानो रेत होवे, जिवें मारू थल होवे, ते कहन लगे रेत विच ना किसे ने खंड मिला दित्ती है, चीनी शुगर मिला दित्ती है, हुण कीड़ी दा सुभाव ही है खंड खाणा, मिठे नूं खाणा, ते इक हाथी है ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੇਤ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਦ ਮਾਣੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਹੈ ਖੰਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਏ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਏ, ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ
कदी चुन के नहीं खा सकता। कह लगे कह कबीर गुर भली बुझाई, मेरे गुरु ने पहली गल समझा दी कीती हुए कह खाए। ये श्लोक दो वारी आया, चीती भी आया ते कीती भी आया। कह लगे कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती हुए कह खाए। गुरु ने पहली गल कही जे तू कीड़ी बनेगा ता स्वाद चखना है, क्योंकि निम्रता तो बिना कदी नाम का स्वाद किसे नू आया। पहला सबक निम्रता है। संगत ए बचन जदों सी कबीर साहब दे पढ़ने आ, कहिंदे ने जे सिक्खी नू कमाणा है ना जेड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच, ते पहली बचन ए आ जदों बाबे दे चरणा विच आए ते एक मन लै के आवी कबीर सब ते हम बुरे, इन्ना कु निम्रता विच आ जाई मेरे मालका सब दुनिया तो मैं माड़ा वा, खम तज भलो सब कोए, मेनू छद के सारी दुनिया चंगी है, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा, सोए धरती पैरा हेठ है धरती हेठ बसंदा पानी। जे सिखी कमाणी आ ते गुरु नानक साहिब दा बचन पल्ले बन लै कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, धरती पैरा हेठ है धरती हेठ बसंदा पानी, तू इन्ना कु नीवा निम्रता भी चला जा कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, परनवत नानक तारे सोए। इन्ना कु निम्रता भी चला जा कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। जे सिक्खी सिखनिया ते एक गल ध्यान विच रख लै, कह दे कि फरीदा जो तै मारन मुकियां, ए निम्रता वाला पक्ष। आपां अगे ए भी गल करांगे कि सिख तत्ता कदों हुंदा है। साहब कह रहे ने जो तै मारन मुकियां, जे तेरे ते कोई वार करदा है तेरा बुरा तकदा है। इत्थे मुकियां दा अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह होरां ने कीता है, जे कोई तेरे नाल वधीकी करदा है, जे कोई तेरे नाल ईरखा विच तेनू नीवां दिखाणा चाहुंदा है ते एक कम करी तू ओदे नाल ईरखा ना करी, ओ तां अंदरों सड़िया पिया है, जे तू भी सड़ गया फिर तेरे विच ते ओदे विच अंतर कोई नहीं रहना। सिक्खी दा पहला सबक ए वे, साहब जी कह रहे ने जो तै मारन मुकियां तिना ना मारा घुम। अगली पंक्ति आप नेड़ा घर जाइए, हुण इहदे अर्थ कई बारी सज्जन करदे ने आप नेड़ा घर जाइए, तू अपने घर चला जे गल सुन के, नहीं इहदे अर्थ ने आप नेड़ा घर जाइए। जदों तू ओहदा जवाब नहीं देगा, उस ईरखालू नाल ईरखा नहीं करेगा, ते जेड़ा तेरा मन घर तो बाहर भटकदा पिया ना आप नेड़ा घर जाइए, ये तेरा मन अपने निज घर विच सदा लई टिक जाएगा, ये शांत हो जाएगा। आप नेड़ा घर जाइए पैर तिना दे चुम। कह लगे इनी कु निम्रता आ जाए कि धरती हेठ बसंदा पानी, तू निम्रता भी चला जा। सतगुरु ने कैसे कमाल दे बचन किते ने अमृतमयी बाणी विच, श्री मान भाई साहब भाई वीर सिंह होरां दा एक पावन पवित्र बचन है, उन्हां दी एक रुबाई है, ते उन्हां ने समुंदर दा ते नदी दा आपसी वार्तालाप कराया। हजूर कहिंदे ने बचन करदे ने जिहड़े भाई साहब अपनी रचना विच कोशिश करदे ने कि अपने शब्दां विच लोकां नूं समझा सकी। कहन लगे नदी ना अज बरसात दा पानी लै के नकानक भरी है, छाला मार दी गई, जेदे सामने पत्थर आया ओ भी रोड़ दिया, जे चट्टान आई ओनू भी तोड़ के अपने लाल लै तुरी, जे इस नदी दे सामने किते मनुख आया ओनू भी रोड़ दिया, जे पानी सामने पशु आया ओ भी रोड़ लिया। गल की इन्हें पत्थर भी रोड़े, इन्हें रुख भी तोड़ लै, इन्हें बंदे नू भी रोड़ लिया, इन्हें पशु ते पंछी भी रोड़ लै, इन्हें कच्चियां चट्टाना भी रोड़ लिया। ते जदों ए नदी सागर दे विच जाके लीन होई ना ते कहन लगी देख सागर मैं तेरी किन्नी सेवा करनी आ, मैं तेरे वास्ते किन्नियां कीमती वस्तुआं लैके आउनी आ, तेरे नाल इन्ना प्यारे मैं तेरे लिए जेड़े तोहफे लैके आउनी आ, जे मनुख अड़दा मैं ओनू रोड़ लैनी आ, पशु रोड़नी आ, पत्थर रोड़नी आ, मैं मिट्टी दियां चट्टाना रोड़नी आ। ते सागर हस के कहिंदा है नदिए मुद्दतां तो तू मेरे कोल पिटावां लैके आउनी ए, पर मैं एक गल तेरे तो पुछनी चाहना, कदी बैंत दा रुख क्यों नहीं लैके आई, बैंत दे रुख नूं क्यों नहीं आंदा। ते मैं अर्ज करां उदाहरण दा हमेशा एक पक्ष लईदा, हालांकि बाणी विच वास दी बड़ी साहब ने नखेती भी कीती है, क्योंकि थोथा है गंढा वाला है कुल घाती है, पर एक पक लेना। कहन लगे नदिए सारे लैके आउनी है
बूटे बूटियां पटनी है, बंदिया नू रोड़नी है, पशु रोड़नी है, पर मेनू दस खां कदी तू बैत का पेटा क्यों नहीं लिया। अगो नदी ने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कह लगी सौ सागर कदी आस भी ना करी मैं बैत नू पट सका। कहन लगा हद हो गई, इना तेरा बहाव ते बैत नू पट क्यों नहीं सकती। कहन लगी ओनू झुकण की जाच आ गई आ, जेड़े चुक जाते ने उन्हां ते मेरी पेश कोई नहीं जाती, जेड़ा अड़ जाए उन्हू मैं जड़ा तो पट लिया। भाई साहब कहन लगे याद रखियो मना, देख एक झखड़ पिया चलदा ही, एक नदी वहिंदी पई आ, तू इना कु निवरता भी चला जाई, बैंत की तरह अपने आप नू झुकाण की जाच सिख लै। जदों तू निम्रता भी झुकण की जाच सिख गया ते चेते रखी वकारा ते जितने मर्जी नदियां भी तूफान आउण ते वकारा की ताकत नहीं तेनू पट के लै जाण, क्योंकि तेनू गुरु के चरणा भी झुकण की जाच आ गई। निम्रता विच इना आनंद है। भाई साहब भाई वीर सिंह का वचन है, कहन लगे सागर पुछदा नदिए, सारे बूटे बूटियां लियावे। सागर पुछदा नदिए, सारे बूटे बूटियां लियावे, पर ना कदी बैंत दा बूटा इत्थे आण पचावे। नदी आखदी आकड़ वाले सब बूटे पट सकां, पर जो झुके वेग रौ रुख नू उस ते पेश ना कोई जावे। जिन्नू झुकण दी जाच आ जाए ओदे उपर मेरी कदी पेश नहीं हो जांदी। हजूर कहिंदे ने जेड़ी गुरसिखी दी ए निशानी है। भाई गुरदास कहिंदे ने पहला सबक है तू निम्रता विच आ जा, अपने आप नू झुका लै। जे कितो तेनू नाम की दात किते गुरमुख प्यारा मिलता है तू ओदे चरणा विच झुक जा, अपनी खोंद नू कैम ना करी। शायद यही कारण मेरे गुरुदेव ने झुकण वास्ते बाणी विच कहा ते कहन लगे जे झुक जाएगा ना सिखी नू सिखेगा, ते कहन लगे फिर सुखी बसा मशकीनिया आप निवार तलै, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। जे तेनू सजना झुकण दी जाच आ जाएगी फिर गुरु तेरे भांडे विच कोई दात पाएगा। मेरे साहब ने केवल क्या नहीं सगो करके भी दिखाया। धन गुरु रामदास उन्हां दे चरणा दा ध्यान टिकाइए जेड़ा दीन दुखियां दे बांह पकड़न वाला है। कई बारी जदों गुरु रामदास जी दा नाम मुख विच आउंदा है ना ते कदी अंदर भिजा होवे ते चरनाट छिड़ जांदी है, क्योंकि गुरु रामदास तेरे दर ते कदी किसे दी झोली खाली नहीं आई, तेरे दर तो झोलियां भरिया जांदियां ने। क्यों? क्योंकि तुसी आप ओ दिन देखे ने गरीबी कटी है, लोकां दियां ठोकरां खादियां ने, गालां खादियां ने, किन्ने किन्ने दिन भुखियां रह के घर गुजारा कीता है, ते अज जदों कोई भुखा कोई बेघरा कोई तन तो नगन ते कोई दुखी जांदा है तू उसे तरह देख के पसीज जांदा है ते ओदे दुख नूं देख के ओदी झोली विच तू दात पा दे। अज भी तेरे कोल किरपा है। ते गुरु रामदास उन्हां दे जीवन विच इक बड़ा प्यारा वचन आउंदा है, कहिंदे ने गुरु रामदास जी दे ना नेत्रां विचों कदी नीर नहीं छिछुकिया, चेते रखना। ते गुरु रामदास किन्ने कु गुरु अमरदास दे नेड़े हो चुके सन। एक वारी लाहौर तो गए ते कहिंदे ने बेमौसमे अंब मिल गए ते अंब बड़े रसदायक सन, ते रस्ते विच ना जदों अंब बन्ने कपड़े विच लपेटिया अंब ते सोचिया मैं अपने गुरु दे चरणा विच रखांगा, मत्था टेकांगा, नमस्कार करांगा, गरीब दी भेटा स्वीकार करनगे। ते कहिंदे ने रस्ते भी जदों देखिया ते ओ अंब जिहड़ा है ना ओदे विचों रस चोन लगा। हुण सोचिया करां कि गुरु अमरदास लई लै के चलांवां ते भेटा उन्हां दे चरणा विच रखनी है, ते इक्को दम गुरु अमरदास दा ध्यान टिका दिता ते ध्यान टिका के आप अंब चूप लिया, रस पी लिया। ते जदों गोइंदवाल पहुंचे ना ते गुरु रामदास दे चरण गुरु अमरदास दे चरणा विच टेकिया मथा, ते अजे कुछ कहणी वाले सन ते गुरु अमरदास कहिंदे ने भाई जेठिया अंब दा स्वाद बड़ा मिठा सी, रस बड़ा सी, क्योंकि गुरसिखां अंदर सतगुरु वरते, गुरु के सिख दे अंदर गुरु वरतदा जे। कहन लगे भाई जेठिया बड़ा आनंद सी। ते ओही गुरु रामदास जेड़े सिख दे चरणा दी धूड़ मंगदे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਧਰਤੀ ਖੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਏ,
अजे हरिमंदर साहब बनिया नहीं। मैं सिर्फ इको पंक्ति से अर्ज कर रहा कि धरती खेत वसा पानी, तू धरती तो भी नीवा चला जाना, पहला लक्षण तेरे को निम्रता चाहिए। सतगुरु गुरु रामदास किनारे ते बैठे ने, आप टोकरी ढोंदे ने, बाबा बुढ़ा जी सिख प्रेम च भिजे हुए होर भी सेवा पै करते ने, ते इनी देर नू ना एक दौड़िया सिख आया है, ते आके कहिंदा गुरु रामदास जी गुरु नानक साहब दे वड्डे साहबजादे आए जे, बाबा श्री चंद जी आए ने, ते गुरु रामदास जी ने टोकरी रख दिती। चेते रखियो असी कई बारी कथा करदे आ कीर्तन करदे, मैं एक मिनट विचों निकलन लगा, असी शब्द एहो जे वरत जाने आ ना, कई बारी ते चलो हुंदा है बंदा बहाव च तुरिया जाए, कई बारी असी मन विच ईरखा रख के भी शब्द वरतने आ। बाबा कालू जिवें मैनू खिमा करना मैं शब्द कह रहा वा, बाबा श्री चंद बारे, बाबा लखमी दास बारे, प्यारियो एक गल चेते रखियो, जिदन मेरे गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी दित्ती सी ना, ते माता सुलखनी ने यही बचन पूछे सन, सतगुरु गद्दी भाई लैणे नूं दित्ती, गद्दी दा मालक ए वे, मेरे पुत्रां दा की बनेगा, ते हजूर ने एक गल कही सी सुलखनीए लैणा जिहड़ा ओ गुरु वे, ए जिथे जोत जाएगी ओ गुरु के होणगे, ते तेरे पुत्रां नूं लोक बाबे के कहणगे। ध्यान रखना उत्थे एक शब्द क्या कवि संतोख सिंह ने वरत्या, ते पुछया दादा मेरे पुत्रां दी रोजी, ते अगला बचन सी सुलखनीए इस घर विच तां बैठे होए कुत्तियां दे पैरां विच करामाता ने, ए ते गुरु नानक दा खून ने। साहब ने उत्थे बचन किया गुरु घर के जे होए सवाना, तिनको पूजा सगल जहाना, गुरु घर दे ते कुकरां नूं लोक पूजदे ने सुलखनीए, ए गुरु नानक दा खून ने। पर असी समझे नहीं प्यारियो, असी क्या परख विचों पूरे नहीं होए, हो सकदा है कि गुरु की नजर विच ओही प्रवान हो सकता है जिहड़ा गुरु नूं पाए, परख विचों पार होना कोई खाला जी दा वाड़ा है, गुरु नानक की नजर विचों निकल जाना कोई छोटी जी बात है, पर ओ गुरु नानक दे पुत्र ने बाबा श्री चंद जी दी 148 साल उम्र है, 4 ग्रंथ लिखे ने बाबा श्री चंद्र जी ने, ते एक ग्रंथ विच उन्हां ने ना सब तो पहला शहनशाह शब्द गुरु नानक लई बाबा श्री चंद ने वरते, सब तो पहला शब्द आरता नानक शाह शहनशाह का, दीन दुनी के शाह पात शाह का पहला शब्द उन्हां बाबा श्री चंद ने वरते कि मेरा बापू दीन दुनी का मालिक है, 148 साल उम्र है, ते अज बाबा श्री चंद आए ने अमृतसर की धरती ते, खबर पहुंची है गुरु रामदास जी बाबा श्री चंद आए जे, ते गुरु रामदास अगो लैण गए ने, क्योंकि गुरु नानक दा पुत्र है ना, इंद्री जेते नाम बाणी विच भिजा है। प्यारियो बाबा श्री चंद जी ने गुरु नानक दी बाणी तो बिना दूजे दा प्रचार नहीं जे कीता, गुरु नानक दी मत नूं प्रचारिया है, जदों आए ने ते आके दस्या कि बाबा जी आए ने, ते धन गुरु रामदास अगो लैण गए ने। मैं इस करके थोड़ी जी इतिहास की टेक लै रहा कि मना तेनू भी कितने लग जाए कि सिखी कमान लई पहला निम्रता चाहिए। बाबा जी आए गुरु रामदास लैण गए, अगो जाके झोके नमस्कार कीती, बाबा श्री चंद जी बहुत बुजुर्ग ने मिले, ते कहिंदे बाबा श्री चंद जी ने ना सुभाकण इनी गल पुछी सी, कवि संतोख सिंह कहिंदे ने इनी गल पुछ ली गुरु रामदास तेरा दाड़ा बहुत लंबेरा है, तुहाड़े दाड़े दे केश क्यों लंबे ने, ते मेरा दीन दुनी दा पातशाह थले उतर के ना बाबा श्री चंद दे चरणा नूं हाथ विच पकड़ के अपने केसां नाल झाड़ के कहिंदा महापुरशो तुहाडे वर्गे संत जना ते गुरु नानक दे खून दे चरण झाड़न वास्ते तुहाडे चरण झाड़न लई दाड़ा वधाया, ते कहिंदे ने बाबा श्री चंद तो रिहा ना गया, थले उठ के ना गुरु रामदास दे चरण पकड़ लै, अखां विच नीर भर के कहिंदे जिहो जिहा सुनिया सी ओहो जिहा वेख्या, उत्थे जिहड़े शब्द उन्हां ने वरते कहिण लगे कि गुरु रामदास जी शब्द भाई संतोख सिंह दे ने कहिण लगे देख निम्रता गुरु की धरती पैरां हेठ है धरती हेठ वसंदा पाणी, देख निम्रता गुरु की श्री चंद भय प्रसन्न संग अंगत लीनी सेव कर, एदा मतलब बाबा श्री चंद मनते पे ने कि गुरु अंगद ने धक्का नहीं किया, कह लगे गुरु रामदास भाई लैने तो अंगद ता बने ने क्योंकि उन्होंने गुरु नानक की सेवा की, अंगद लीनी सेव कर
तुमरा प्रेम अनन। अगली जड़ी पंक्ति कही, कहन लगे मैं कुछ देण जोगा ते नहीं, पर मैं एक अर्ज करना वा गुरु रामदास, तेरे सरोवर दे किनारे खलोता वा, तेरे विच एनी निम्रता है, ते जेड़े तेरे सरोवर विच आके निम्रता नाल इशनान करनगे ना, उन्हां दे जन्मा जन्मा दे पाप तेरा सरोवर धो देगा। उत्थे बचन वरत्या सी, कहन लगे गुरु रामदास नू देख निम्रता गुरु की, श्री चंद भय प्रसन्न, अंगत लीनी सेव कर तुमरे प्रेम आनन। ते अगला वचन सी, तुमरी महिमा अदक है, कहिया काहे बनाए, तुमरे सर में जो मजे पापी बीगत पाए। तेरे सरोवर विच तां पापियां नू मुक्ति मिलनी है, पहला सब की एवे के जे तू किसे तो कुछ लेना है, जे सिक्खी नू कमाना है, ते भाई गुरदास कहिंदे ने गुर सिक्खी दी इहो निशानी, ते पहली निशानी एवे धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पाणी। धरती नीवी है पर पानी उस तो भी नीवा है। जे तू कुछ कमाना चाहना है ता प्यारिया अपने अंदर निम्रता नू धारण कर ले, जदो तेरे कोल निम्रता आवेगी ते फिर हजूर बाणी विच कहिंदे ने भाई गुरदास, हौं तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, तेरे विच निम्रता आ जाए, ते जदो तेरे विच निम्रता आवेगी ना, फिर कदी तू आकड़ के गुरु घर खलो के ए नहीं कहेगा मैं चंगा मैं वड्डा। फिर सिक्खी दी पहली निशानी ए वे तू गुरु चरणा विच खलो के कहेगा दाता मैं कीता ना जाता हराम खोर, हों क्या मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार तानक रूप राह करतार। जिदन तू चुकेगा ना उदन फिर गुरु कोल खलो के कहेगा जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साब तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जदो तेरे अंदर सिक्खी दा पहला गुण आ जाएगा फिर गुरु अर्जन साहब दे मुताबक जिवें सारा गुरु ग्रंथ साहब तैयार हो गया, ते कई बारी हैरान भी होई दा के बाणी तरतीब नाल ते जिन्ना गुरसिखा ने गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन किते ने किन्ने भागा वाले ने, ते वैसे भागा वाले आपां सारी जे, क्यों के गुरु कलगी वालिया 300 साल पहला आनंदपुर की पहाड़ी ते जिस खालसे की सिरजना तू जिस दिन कीती किन्ने भागा वाले हां असी उस दिन नू हुण वेखणा। जे सतगुरु तू कृपा कीती दूजे भागा वाले ए हां के गुरु नानक साहब जी सब तो वड्डी तुसी कृपा ए कीती के गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गा सानू गुरु दे गए। सारी बाणी तरतीब नाल मैं अपने विषय ते आवां, निम्रता सिक्खी दा पहला लक्षण ही एवे, सिक्खी दी पहली निशानी एवे। देखो पहला गुरु नानक साहब दी बाणी आउंदी है, फिर गुरु अमरदास दी, गुरु रामदास दी, गुरु अर्जन साहब जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी दी जो हुण तरतीब है, फिर गुरु तेग बहादुर जी दे शब्दां तो बाद अष्टपदियां, अष्टपदियां तो बाद छंत, छंत तो बाद वारां, ते वारां तो बाद भगत बाणी। हुण तरतीब मुताबक शलोक वारां ते वधीक आए, गुरु नानक साहब दे शलोक, गुरु अमरदास दे शलोक, गुरु रामदास दे, गुरु अर्जन साहब दे शलोक आ गए। असीं पढ़ लिया तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप कृपाल, पढ़ लिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। हुण जदों बाणी दी तरतीब मुताबक इत्थे गुरु अर्जन साहब दे शलोक खत्म ने, अगे आ गया शलोक महला नौवां, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीण। जदों सबंधा शलोक पढ़ लिया 57 अखीरला आया कि राम नाम उरमै गयो जाकै सामने कोए, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। ए शलोक पढ़न तो बाद तरतीब अनुसार शलोक महला पंजवां पहला होना चाहिदा सी, पर इत्थे तरतीब अनुसार नहीं, इत्थे फिर आ गया मुधावनी महला पंजवां, ते मुधावनी महले तो पंजवें तो बाद फिर आ गया शलोक महला पंजवां। इहदा की कारण? एक विद्वान लिखदा सिखा सिक्खी दी पहली निशानी निम्रताई, तेरे गुरु ने गुरु की बाणी अंकित करदियां अखीर विच एक गल कही। आम तौर ते कोई चार पन्नियां दी किताब लिख लै ना, वह पहला शब्द ही लिखता मैं इन्नी मेहनत की, इन्ने ग्रंथ पढ़े, इन्ना बंदिया नू मिलिया, ता मैं मेहनत करके ग्रंथ लिखे, ते अगली गल वह कहिंदा मेरी आग्या तो बिना, यह कापीराइट मेरा, मेरे तो बिना किसी ने छपाया ना तो मैं उसके मुकदमा कर देंगा। तुसी देखे ना हुण भावें चलो साडे लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब के अगे नाम भी लिख दिते ने फलानी दुकान विचों, असलीयत यह जे कि गुरु साहब ने लिखारी का नाम ही गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा। जे तत्करा दिता है
केवल बाणी दा, केवल हजूर ने शब्दां दा, वो भी महला पहले ही पाया है। किते भी गुरु अर्जन साहब ने अपनी कलम नाल तत्करे विच भी नहीं लिखिया कि धन गुरु नानक साहब जी तेरी बाणी शुरू होने लगी। चेते रखना गल बड़ी रमज भरपूर है। सारी बाणी तरतीब नाल दे दित्ती। चार अखर लिखण वाले दे पुत्र पोतरे भी ओदियां किताबां वेचदे ने। ओ किताब कोई छाप नहीं सकदा। ते शब्द इको कलिया प्रोफेसर साहिब सिंह ने टीका कीता दर्पण। उन्हां दी जीवनी विच कहिंदे ने जदों मैं छापण लई कहा ते लोकां मैनूं टीचरां कीतियां। उन्हां कहा तेनूं किने पढ़ना होए, तेरे टीके नूं किसे पुछना है। उन्हें राज पब्लिशर वालियां नूं जलंधर दिता एक गल कही, कहन लगा सजना मैं पता रहा के ना रहा पर गुरु नानक की कृपा नाल तेरिया कई पुछता इहदे नाल ही रोटी खाई जाणगी। ते सब तो ज्यादा टीका राज पब्लिशर वाले जलंधर तो छापदे ने, उन्हां सारा काम ही छड़ के केवल टीके छापदे पए। खैर मैं अपने विषय ते आवां। धन गुरु अर्जन साहब की बाणी श्लोक महला नौवें तो बाद इहदा मतलब है सिखां देख तेरे गुरु ने 30 रागां विच बाणी उचारी। अपने तो बिना चार पातशाहियां दी बाणी होर इकत्र कीती क्योंकि उहदे नौवें महले दी बाणी नहीं सी। 15 भगतां दी बाणी इकत्र कीती, 11 भट्टां दी इकत्र कीती। कोई थोड़ी जी कमाई है कि हिंदुस्तान दी सारी अध्यात्मकता नूं, हिंदुस्तान दी रूहानियत नूं एक ग्रंथ विच अंकित कर देना कोई छोटी जी कमाई नहीं। पर इन्ना कुछ करके फिर कहिंदे ने दाता मेरा कोई गुण नहीं। फिर अखीर विच निम्रता आई कि तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतो ही, तेरे कीते नू मैं जानिया नहीं, ते जो कुछ भी ये सेवा हुई है केवल तेरी कृपा नाल हुई है, मेरे कुल एनी समर्था नहीं सी मैं सेवा कर सकता। गुरसिखी दी एवो निशानी, पहली निशानी एवे कि तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कीतो ही, मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं। कहन लगे आपे तरस पयोई, तरस पिया में रामत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। ते निम्रता विच अखीर विच सतगुरु प्रतख हर कहिंदा है नानक नाम मिले ता जीवा तन मन ठीव है हरिया। मैं अर्ज कीती जेड़ी गुरसिखी दी गल असी अज करने पए आ उस गुरसिखी दा पहला लक्षण निम्रता। भाई साहब कह रहे ने धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ बसंदा पानी, तू पानी दी तरह निम्रता विच आ जा। अगले ऐतवार विचार करनी है पानी चला निवान नू, सिखी किवें नीवे पासे जांदी है कि जीवन करके नीवे। अगला बचन है निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी। सिखी निर्मल किवें वे, शीतल किवें वे, ए किसे नू शुद्ध किवें कर दीए। फिर अगला आपां विचारांगे जदों फिर इहनू कुछ सेक लांदा है ना फिर तप के अग नू बुझाउण दी वी जाच सिखदी। कल्ली ठंडी नहीं, ए जदों तपी होवे ना उदों फिर तपिया होया भी बुझा दिंदा है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਿਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਆ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ। ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

अकाल मूरत अजूनी सै पंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक होशी सच

महाराज की दूजे शब्द नहीं असर रख दे। कहन लगे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी सा कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। महाराज क्यों कच्ची है? कहन लगे नु कहन वाले कच्चे ने। महाराज कहन वाले कच्चे किवें? उन्हें दा अर्थ ए वे कि उन्हां दे अपने किरदे विच सच नहीं, आप झूठ न जुड़े ने। ते भावे वह कविता जिड्डी मर्जी वड्डी कह दे, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब दे मुकाबले बड़े पखंडियां ने बनाए कि वह कच्ची बाणी अज तीकरा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का मुकाबला कर सकी? सवाल ही नहीं पैदा होंगे। जेड़े अपने अंदरों थिड़के ने, कामी ने, विषयी ने, रज के वकार भोगते ने, जिन्हें मर्जी नकल माल के अखर लिखी जान, उन्हां दे अखर किसी दे किरदे नूं रब नाल नहीं जोड़नगे। ते सच जाणो, गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकाश तां होया है जिदन गुरु दे कन्नां विच कच्चे दी बाणी दी आवाज पई सी। आओ प्रकाश दिवस वल आउणा है, कच्चे दे शब्द कन्नां विच पए ते उहदे विच इक सोच पुरी कि गुरु ग्रंथ साहिब की सच्ची बाणी नूं वख कर देना चाहिए। एक शब्द सी कहने भीड़, देखो अज भी सी शब्द वरतने हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़, जा कहने भीड़ की संपादना, भीड़ के अखरी अर्थ की ने? बड़े सोहने अर्थ किए ने डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने। भीड़ का अर्थ हुंदा बनना, भीड़ का अर्थ हुंदा समेटना, भीड़ के अर्थ किए गए ने। आपां कहने आदि भीड़ जां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लई शब्द लई असीं वरतने हां कि भीड़ है। भीड़ का अर्थ है वह शब्द, वह पोथियां जिहड़ियां वख-वख थावां ते पईआं सन, उन्हां शब्दां नूं सारिआं नूं इक्को थां ते तरतीब नाल समेटण दा नाम है भीड़। भीड़िया गया, इन्हां नूं इक थां ते इकट्ठियां कीता गया। साहिब धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां ने किरपा करके गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का स्वरूप का संपादना की। इहदा कारण वैसे कई बार अर्ज की है, सियाने विद्वाना ने गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ की संपादना दे तीन कारण दसे ने। सब तो पहला कारण यह सी कि गुरु नानक साहब का निर्मल पंथ थां थां ते ए पंथ फैल चुका सी, ते पंथ नूं चलान दे लई गुरु ग्रंथ होना अत जरूरी सी, क्योंकि पंथ लई ग्रंथ अत जरूरी है। दूजा कारण सी कि गुरु का शरीर एक है, दर्शन करने वाले लखां जगियासू ने, ते गुरु दे दर्शन इक्को समय लखां से किवें कर सकन। तीसरा कारण सी कि कच्चे बाणी पै रखदे सन, इन्नी चलाकी दे नाल इत्थों तक सिख तवारी कहिंदी है कि गुरु ग्रंथ साहिब तो पहला उन्हां चलाक बंदियां ने अपनी पुस्तक तक तैयार कर ली सी। अज भावें असीं जिहड़े मनमुख बंदे ग्रंथ रखदे ने, शब्द पुस्तक रखदे ने, असीं कहिंदे आ फलाणे बंदे दा ग्रंथ गुरु के सिखो। सिख दी जबान ते जदों ग्रंथ दी आवाज आए ते कल्ले गुरु ग्रंथ दी गल करे, वह पखंडी की किताब तो हो सकती है, वह पखंडी की पुस्तक तो हो सकती है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की पदवी शब्द ग्रंथ केवल गुरु निकलता होवे। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना लई तीसरा कारण सी कि कच्चियां ने बाणी रख दिती, इन्नी चलाकी वरती कि पहलियां चार पातशाहियां के शब्द भी उस पुस्तक विच पा दिते। ते बड़े प्यारे बचन हुंदे ने, कदी पढ़ो, कहिंदे ने एक दिन गुरु अर्जुन देव, पहला कारण गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश दा की है, प्रातः काल उठे ने, अपनी सुरत नूं अज लै जाओ रामसर दे किनारे, चुको अपनी सुरत नूं लै जाओ अज धन गुरु अमर रामदास सच्चे पिता जी दे दरबार विच, ते आप गुरमुखां ने देखे ने पहले प्रकाश उत्सव किवें भावना नाल अमृतसर विच संगतां उन्हां ने अज दे दिन धन गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला प्रकाश उत्सव मनाए। पहला कारण गुरु अर्जुन दे बाहर निकले ने, मन विच ही ख्याल पुरे है कि गुरु नानक साहिब दा पंथ बहुत भारी तादाद विच इहदे विच लोक शामिल हो गए ने। वैसे अरदास विच पंथ शब्द आउणा है, इहदी व्याख्या आपां करांगे। पंथ दा अखरी अर्थ राह हुंदा है, रस्ता हुंदा है। खालसा पंथ क्यों वे आपां कहांगे भी कदी किसे बंदे नूं कहिंदे आ राह, राही ते क्या जांदा है, कदी असीं नहीं कहिंदे भी फलाना बंदा राह है, पर हजूर ने खालसे लई शब्द पंथ वरत्या है। पंथ दा अर्थ है रस्ता कि दुनिया दे लोगों जे अपना भला लोचदे हो, खालसा एक मार्ग है

सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपहं गुर प्रसाद

बेनती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला ते इना जालमा ने कुछ नहीं देखा। उस वक्त बीबी शरण कौर नू जींदे जी उस बलदे हुए लांबू दे विच सट के शहीद कर दिता गया। वो बीबी भी उसे शहीद हुई है। भाई वीर सिंह होरां दी रचना चमकौर गढ़ी के साके दे नाल ही उन्होंने एक प्रसंग दिता है वो कविता के रूप में। जदों ये बीबी शहीद हो गई, सतगुरु चले गए, मैं उधर बाद भी तुरना वा, ये थां होंद विच किवें आ गई। अज असीं तकने आ चमकौर साहब जाइए, एक तो गढ़ी साहब गुरुद्वारा, एक दमदमा साहब है, ताड़ी साहब है, हजूर दे नाल थले जिहड़ा गढ़ी साहब दे वो कतलगढ़ जिहड़ा शहीद गंज है, ये थां किवें होंद विच आ गई। साहब चले गए, संस्कार हो गए, कहिंदे ने कोई प्रेम नाल भिजा सिख निकलिया, उन्हूं किसे दस्या कि ये जिहड़ी राख ते अस्त ने ना ये गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे ने। ते जालम कहिंदा सी कि इस राख इस अस्त नूं कोई समेटे ना, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा अंगीठा भी नहीं समेटन दिता उस धरती ने, उत्थों दे जालमां ने। कहिंदे ने उस वक्त ये सिदकी सिख शाम दे वेले जितनी राख सी ना इहनूं इकट्ठा कीता ते खड्डा पट के जमीन अंदर उत्थे दबा के चला गया ते जान लग्या अरदास कर गया, मेरे कलगी वालिया कोई होवेगा करनी वाला, कोई आवेगा ते तेरे पुत्रां दी याद जरूर बनेगी, कदी मिट नहीं सकती। नमस्कार कीती पर कदी तको ओ ता अंगीठा समेटन नहीं देंदे, पर इधरों गुरु कलगी वाले पिता जिथे तेरे बच्चे संस्कारे गए, जिथे तेरे सिखां दे संस्कार हो गए, उस राख नूं अज भी लोग नमस्कार करदे ने, ते जेड़े अंगीठा निशन समेटन देंदे उन्हां दा नामो निशान मिट गए, उन्हां ने टिके नहीं रहना। एक गल चेते रखियो, समा जरूर लगदा पर जिथे सच्चे खून दा एक तुपका भी डिगे उथे केसरी झुलदा जरूर हुंदा जे। कदी चांदनी चौंक सी, कदी चांदनी चौंक सी, कोई है सी उथे लाश नूं चुकण वाला, पर केसरी झुल रहा है। कदी तको लाहौर जे डेरा साहिब, कदी समा सी गुरु अर्जन साहिब नूं तत्ती तवी ते बिठाया, पर याद गा रहे सरहंद विच तां साहिब ते बच्चियां दे संस्कार लई जमीन भी मुल लई गई, पर जिन्हां ने खरीदी उन्हां दे नां तां हैण, पर जिन्हां ने वेची उन्हां दा नामो निशान ही मिट गए। केसरी तां उत्थे भी झुलदा पिया, गुरु कृपा करे जिथे गुरु गोबिंद सिंह जे बच्चियां दा सच्चे सुच्चियां दा खून डुलै उत्थे यादगार कदी मिटदी नहीं। ओ चला गया इन्नी गल कह के, साध संगत इसे चमकौर साहिब दे नाल इक पिंडे बेला, ए किवें होंद विच आया अस्थान। इथों दा एक चौधरी सरदार होया, कुछ पिंडां दा मालक ओहदा नाम सी भाई दयाल सिंह, शायद आप जी ने सुनी होवे। इस घटना दा जिक्र कमर करम सिंह हिस्टोरियन ने एक किताब संपादित कीती सी सिख इतिहास दे बहुमुल्ले लेख, ओहदे पन्ना नंबर 72 ते 73 ते श्रीमती बीबी जसवंत कौर वल्लों एक पेपर लिखा गया ते ओहदे विच उहनां ने इस घटना दा जिक्र कीता। कहिंदे ने इस सरदार दा नाम सी दयाल सिंह, चंगा राई सी, ते जदों इह चमकौर आउंदा है ना ते इस थां दे चार चुफेरे घुमदा सी, बोलदा नहीं सी हुंदा, अखां तों नीर सड़दा सी ते मन विच सोचदा सी गुरू गोबिंद सिंह मैनूं ओह थां कोई दस्से तां सही जिथे तेरे पुत्रां नूं शहीद कीता गया सी, जिथे संस्कार कीते गए, गढ़ी साहिब तां लभ लिया, ओह थां बना लिया, पर ओह जगह नहीं सी मिलदी जिथे संस्कार कीते गए। लभदा रहा, लोकां तों पुछे, इलाके दे बजुर्गां तों पुछे, ते एक दिन फिर किसे ने दस दिता दयाल सिंह आई ओ थां जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा संस्कार होया सी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे सिख जेड़े ने ओ संस्कारे गए सन, ते इत्थे राख ते अस्त ने। कहिंदे ने सरदार दयाल सिंह होरां ने नमस्कार कीती ते घंटियां बद्दी ओहदे तों सिर ना चुक्या गया, नाले अरदास करे ते नाले आखे गुरु गोबिंद सिंह जे किते मैं भी उदो हुंदा ते जिथे तेरे पुत्रां दियां देहियां पईयां सन मेरा शरीर भी उत्थे लग जांदा ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह मेरा जीवन सफल हो जांदा। उठिया घर गया ते इहने दूसरे दिन, अमीर बंदा सी, लकड़ खरीदी, इटा रेते बजरी दा प्रबंध कीता ते इस अस्थान नूं बनाना शुरू कर दिता। लिखते ने विद्वान सज्जन, जदों ए अस्थान बना रहे पहले दिन कुछ कु इन्हां ने इमारत शुरू कीती, नींह रखी ते शाम दे वक्त सोदर रह

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी ते गुरु साहब ने जिहड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनेंगे उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे ए बाबे के होणगे बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सवाना जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना लोग उन्हां दी पूजा करनगे अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया बाबा बुढ़ा जी पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जिन्हों बाबा बुढ़ा जी ने लाया गुरु नानक साहब नू नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने फिर साहब ने कहा बुढ़िया मेनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणा विच कर बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया भाई लैणा जी नू गुरु अंगद साहब नू हुक्म हो गया क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे बाबे बुढ़े दे जीवन नू नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा कहन लगे भाई लैणे नू गुरु अंगद साहब नू तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं तुसी खडूर चले जाओ बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर आए इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आ के टिके ने इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां मत्ते दी सरां दा हाकम सी जिहड़ा चौधरी सी उहदा नां सी तख्त मल इहदी धी सी माता विराई दा असली नाम सी वीरां बाई इहदे सत भरा सन ते लोकी आम तौर ते इहनूं सत भराई भी कहिंदे हुंदे सन इस माता विराई दा आनंद कारज खडूर दे जिमीदार नाल होया चौधरी नाल होया माता भराई ने गुरु अंगद साहब दे पिता बाबा फेरू मल नूं सक्का भरा बनाया सी ते गुरु अंगद साहब माता विराई दे घर आ के ना पहला गुरु नानक साहब दे दर्शन भी कीते सन अज जदों गुरगद्दी जोत मिली माता विराई दे घर आए जिहड़ी रिश्तेदारी करके भैण भी बन गई वैसे भुआ लगदी सी पर वीर शब्द इन्हें गुरु अंगद साहब लई भी वरत्या पर जिदन गुरु जोत मिल गई उदन वीर नहीं उदन गुरु नानक जाने अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए प्रेम दा विछोड़े दा सल सी बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता अगों दरवाजा चिण दिता ते इतिहासकार कहिंदे ने संगत बेबल हो गई जिहड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिसे नहीं एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है पर गुरु अंगद साहब हैन किथे माता विराई नू कहा तू दसना नहीं किसे नू गुप्त वास हो गए सिख संगतां थां थां ते गईयां भाई अजिता रंधावा इहदे मन विच भी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होवे जदों संगत नू गुरु ना लभिया उस वक्त एक ने क्या कहन लगे भलियो भटको ना चले दो बाबे बुढ़े दे कोल रमदास ओनू गुरु नानक एक बचन दे के गए बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा केवल बाबे बुढ़े नू पता है गुरु नानक दी जोत किथे टिकी हुई शब्द बड़ी प्यारी पंक्ति सी तेरे तो ओले कदे ना होसा संगत पहुंची रमदास बाबा बुढ़ा जी खेतां विच काम पै करदे ने जाके कहन लगे महापुरशा विछड़िया नू मिलाण वालिया अज संगत तेरे घर विच आई है संगत दियां अखां विच नीर सी पुछया दसो साध संगत इस किरमले की हुक्म है कहन लगे बाबा तैनू गुरु नानक साहब एक बख्शिश दे के गए ने तेरे तो ओले कदे ना होसा
एक कृपा कर इस बिछड़ी हुई संगत नू गुरू तक मिला दे, इस संगत नू गुरू तक ले जा। बाबे बुढ़े ने रबाबी नाल ले ले, संगत नाल ले ली। बाबा बुढ़ा रमदास तो तुरिया, संगत दा इकट्ठ नाल सीधा खडूर आके पहुंचया, ते पहुंचया भी माता विराई दे घर जिथे गुरु अंगद साहब टिके हुए। आके कहन लगे, मां नमस्कार कीती माता विराई ने, देखिया बाबा बुढ़ा आ गया, बड़ा अदब कीता। कहन लगे, माई तेरे घर गुरु टिके है। माता विराई दे शब्द संग भाई वीर सिंह लिखते ने, कहन लगी तुहानू किने दस्या मेरे घर गुरु वे। ते बाबा बुढ़ा मुस्कुरा के कहन लगे, माई तेरे चेहरे का नूर दसदा पै के तेरे घर विच गुरु है, तेरे चेहरे की रौनक दस दी है तेरे घर गुरु है, क्योंकि जितना मर्जी तू लका लै, क्योंकि नाम का रंग बोल के कहिंदा तेरे घर दीन दुनिया का खजाना है। कहन लगी, बाबा तू सब कुछ समझना है, पर मैनू अपने गुरु के हुक्म विच पाबंद रहन दे, मैनू हुक्म नहीं मैं जबान खोला। बाबे बुढ़े ने पहली जुग दसी, कहन लगे सिखो गुरु प्रगट करना जे। कहन लगे, हां ते रबाबिया नू क्या रबाब छेड़ो ते बाणी पढ़ो गुरु नानक दी, कदी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा के गुरु नानक दी बाणी सुन के गुरु अंगद पातशाह बाहर ना आवे। बाणी दा अदब कितना, गुरु दी बाणी सुन के गुरु अंगद जरूर बाहर आवेगा। जदो रबाबिया ने शब्द छेड़िया, मैं मन जारन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जियो, जदो प्रेम नाल भिजे शब्द निकले ते उस वक्त किन्ने किवाड़ खुलिया, गुरु अंगद साहब बाहर आ गए। ते बाबे बुढ़े ने उच्ची आवाज किया, संगते गुरु नू जदो भी प्रगट करने बाणी दा आसरा लई, क्योंकि बाणी दे विच गुरु प्रगट हुंदा। रमजा पांदे पैसन के आने वाले समय विच ए करने, जदो गुरु अंगद साहब बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार पहली कीती, कहन लगा, बाबा सतगुरु इस संगत विछड़ी नू अपने नाल जोड़, क्यों तुसी अंदर टिक गए हो, इस संगत नू कौन सांभेगा। कमाल दी गल, मेरे गुरु अंगद साहब दे नेत्रां विच नीर सी, ते मुख विचों जिहड़ा पहला शलोक निकलिया ते गुरु ग्रंथ साहब दी श्री राग की वार विच गुरु अंगद साहब दा पहला ही शलोक है। पुछया, सतगुरु अंदर क्यों टिके हैं, ते नेत्रां विच नीर भर के क्या, बुढ़िया जिस प्यारे सिओ निहो तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताक है पाछे जीवना, पर क्या सतगुरु इनू तेरे तो बिना आसरा नहीं संगत नू। बाबे बुढ़े ने विछड़ी हुई संगत नू गुरु नल मिला दिता, ते फिर हाथ जोड़ के क्या, सतगुरु अपने इस बच्चे नू कोई हुक्म दे, मेरे प्रति की हुक्म है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब ने शब्द कह सन, कहन लगे, बाबा तिनको क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक देव, किन्नी कु कृपा होगी होवेगी। गुरु अंगद साहब ने कहा, की उपदेश करा तेनू जिनू गुरु नानक कृपा देगी। गुरु अंगद साहब दा समा लंघिया, ते बाबा बुढ़ा खडूर टेक गया, बाबे बुढ़े नू सेवा दिती गई गुरु की लंगर विच माता खीवी दे नाल। बाबे बुढ़े ने रज के भांडे मांजे, रज के तप्पड़ झाड़े, गुरु अंगद साहब दे चरण परशे। अज जिदन बाबा अमरदास आ गए ने, ते गुरगद्दी गुरु अंगद साहब तो गुरु अमरदास को जानी है, ते अज फिर आवाज दिती कि बाबा बुढ़ा जिवें लैण गुरु नानक तो जोत लैणे विच आई, ते अज गुरु अंगद तो जोत गुरु अमरदास अंदर जानी है, पर गुलियाई दी तिलक जेड़े ने बाबा बुढ़िया तू ही ला।